FM बँड 100.6 मेगाहर्ट्झवर आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे. 6 बजने को है लीजिए प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार बस कुछ ही पलों में.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम विवरण लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान होगा भाग 180। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम और शाम 6:45 पर सुनेगा संगीत सरिता। श्रृंखला होगी महिला रचनाकारों की बंदिशें, कलाकार गायिका विदुषी कल्पना झोकरकर भाग 4। गायन सहभाग अनुजा झोकरकर, तबला यति भागवत और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनावणे, निवेदन ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिए 7:30 से हमें राही प्यार के। 8 समाचार प्रभात 8:15 पर सुबह त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रमा। 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। 10 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। 11 रंग तरंग। 12 हिंदी समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी और 2:15 पर दोपहर समाचार। पर सदाबहार नग में 3 सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, साड़ियों का

संसार चिकन की साड़ियां, कलाकारी और शब्द हमारे विचार आपके सामंजस्य व्यंजन होंगे, फलों के जायके। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुने सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। शाम 5 बजे छाएगी 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर कार्यक्रम विवरण सुनिएगा झरोखा के अंतर्गत। शाम 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका आराम बड़ी चीज है, लेखन शांति मेहरोत्रा का, निर्देशन रूपम नारायण पांडे का, 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर, 10 बजे छायागीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग।

आपको फिर से बता दें, 1 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर और 2 बजे त्रिवेणी। 9:30 पर सुबह और रात आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा, ये केंद्रित होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। सुबह 10 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा। 4 बजे आपको फिर से बता दें, पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुनिए सुप्रसिद्ध रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में ये आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा। शोक में

डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, आपने सुना भाग 180।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें ये श्रृंखला लेकर हम फिर उपस्थित हैं। कल्पना जी, आज इस कड़ी में हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं ये तो आप जानकारी दीजिएगा ही, लेकिन पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि महिलाओं ने किस तरह की बंदिशें रची और किस तरह की बंदिशों का समावेश किया, और एक प्रश्न और है साथ में कि उन्होंने क्या ध्रुपद और धमार भी रचा?
2: जी, कई महिलाओं ने अपने हिसाब से ध्रुपद, धमार, होरी
1: जी
2: और तराने अलग अलग प्रकार के

0: इस तरह के अलग अलग गीत प्रकारों को भी संगीतबद्ध किया है
1: जी,
0: क्योंकि उस समय का दौर कुछ अलग था। बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, महिलाओं का बाहर गाना बजाना
1: मुश्किल था
0: नहीं के बराबर था। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ और जो सामाजिक जो कुरीतियां अलग होते गई और महिलाओं को स्वतंत्रता जैसे प्राप्त होने लगी, तो उनकी गायन शैली में अलग अलग रचनाओं का समावेश हुआ और उनको बाहर लोगों के सामने गाने की इजाजत जब मिली
1: जी,
0: तब उनको अपने भावों को प्रकट करने और गायकी का ढंग अपने अलग से बताने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेज मिला, क्या कहते हैं, मंच मिला
1: जी,
0: और जिसके कारण वो अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की बंदिशों के द्वारा करती
1: जी,
0: गई
1: जी। तो गायन के कौन कौन से प्रकार उन्होंने रचे?
0: बहुत ज्यादा तो ध्रुपद धमार नहीं रचा है, लेकिन कुछ हद तक बंदिशें उसकी भी बनाई गई हैं। अधिकतर विलंबित द्रुत ख्याल तराने इनका अधिकतर प्रचलन हुआ
1: जी,
0: रचनाओं का निर्माण हुआ। और ठुमरी, दादरे, होरी, चैती, कजरी, उपशास्त्रीय संगीत के इन प्रकारों को भी कई महिलाओं ने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं
1: जी। तो बताइए कि आज की इस कड़ी में किन रचनाकार की आप चर्चा करना चाहेंगी और कौन सा राग सम्मिलित करेंगी?
0: जी जी, आज की हमारी रचनाकार है डॉक्टर श्रीमती सुशीला पोहनकर जी
1: जी,
0: जो कि बहुत सुंदर रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। बहुत अच्छी उनकी गायकी थी, अत्यंत सुंदर भावपूर्ण बंदिशों का उन्होंने निर्माण किया है
1: जी।
0: तो सुशीला जी ने अपने पिता बालकृष्ण जोशी, जिनको बाबूराव जोशी कहते थे, उनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा पाई। बाबूराव जी बहुत उत्तम हारमोनियम एवं ऑर्गन वादक भी थे। सुशीला जी ने PhD भी हासिल की एवं जबलपुर महाविद्यालय में संगीत की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहकर और बाद में प्राचार्य पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। अनेक विद्यार्थियों को वो तालीम देती रही और बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों का निर्माण किया
1: जी। और आपकी इन बातों से भी हमारे श्रोताओं को तालीम मिल रही है
0: जी।
1: तो बताइए अब कौन सा राग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगी?
0: आज उन्होंने बनाई हुई बंदिशों में से हम राग श्री में दो बंदिशें आपको सुनवाते हैं
1: जी। तो राग श्री किस समय गाया बजाया जाता है और क्या है इस राग का चलन?
0: जी, श्री राग पूर्वी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गंधार एवं धैवत स्वर वर्जित है। इसकी जाति औडव संपूर्ण कही जाती है और इसका वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है और गान समय इसका सूर्यास्त के समय का है। ऋषभ पंचम की संगति जो है बहुत ही मनोहारी लगती है
1: जी।
0: तो मैं अब आपको श्री राग का थोड़ा चलन बताती हूँ
1: जी। स्वागत है।

0: अब इसमें कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगी?
1: इसमें मध्यलय तीन ताल में एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल है, पत्तियां झर लागी शिशिर ऋतु की।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: और उसके बाद द्रुत एक ताल में एक बंदिश, आओ संजारे घर आओ।
0: वाह,

0: वाह कल्पना जी, आपने अपनी गायकी से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और ऐसा सुंदर दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हुआ। कितनी सुंदर बंदिश थी। और अब बताइए, इस कड़ी में अब क्या शामिल करेंगे?
1: अब मैं डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी ने बनाई हुई रचनाओं में से राग भूपाली में एक तराना प्रस्तुत करती हूँ
0: जी।
1: हालांकि मैंने भी उनसे शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं चाहूंगी कि ये बहुत सुंदर तराना मैं आपके सामने पेश करूँ।

0: वाह, बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया। अब क्या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं?
1: अब मैं डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी की आवाज में, उन्होंने ही बनाई हुई राग देश में, एक बंदिश आपको सुनाऊंगी।

महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में आपको सुनवा रहे हैं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, सविता सिंह का। आज संगीतकार बुलोसी रानी को हम नमन कर रहे हैं।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। सुनिए उनके मधुर धुनों से सजे कुछ यादगार गीत आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में।

अब्दुल्ला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में शिवन रिजवी ने इस गीत को लिखा था और बुलु सी रानी का संगीत था। बुलु सी रानी के संगीत से सजा ये जोगन फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं गीता रॉय की आवाज में। रचना संत मीराबाई की है, संगीतकार हैं बुलु सी रानी।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए,
4: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्यार की बातें फिल्म से, संगीतकार बुलो सीरानी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

मैडम जोरो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और कमल बारोट की आवाजों में। शिवन रिजवी ने इस गीत को लिखा था और बुलोसी रानी ने इस गीत को संगीत से संवारा था। और इस गीत के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने जोगन फिल्म से लिया था, गीता रॉय की आवाज थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संगीतकार बुलोसी रानी के संगीतबद्ध किए कुछ गाने। महसूस कीजिए उस दौर के महक को।

0: राजपुताना फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। इस गीत को जीएस नेपाली ने लिखा था और बुलू सी रानी ने संगीत से संवारा था। लीजिए अब सुनिए सन ऑफ हाथीमताई फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज।
1: आज तेरे सामने झूम के हम
0: संगीतकार हैं बुलू सी रानी।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में सन ऑफ हाथीमताई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे शादाब और संगीतकार थे बुलु सिरानी। अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज आपने सुना सविता सिंह के साथ।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिएगा कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। नीरज ने इस गीत को लिखा था, गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। मेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रखवाला फिल्म का गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी की बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

रखवाला फिल्म का गाना अभी आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। लीजिए अब सुनिए लाल पत्थर फिल्म का गाना, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में। नीरज ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।

लाल पत्थर फिल्म का गीत आशा भोसले मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे। हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में पराया धन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, कल 3 की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 मैं तो 3 बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।

0: थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को यहीं आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है।

0: और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000

0: करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो सीएनजी बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और बीएसएफ परिसरों के बाहर हुए दो धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जल मार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट

0: में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपए बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉन्ग से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, शिक्षा और करियर जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहां शिक्षा ज्ञान और संस्कारों की नींव रखती है, वहीं सही करियर उस पर सफलता का महल बनाता है। केवल डिग्री नहीं, व्यवहारिक कौशल और निरंतर सीखने की आदत ही हमारा करियर बनाती है। मेहनत, दृढ़ संकल्प और सही समय पर लिया गया निर्णय ही उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। शिक्षा वो प्रकाश है जो अज्ञानता को दूर कर आत्मनिर्भर बनाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और मूल्यों का विकास भी करती है शिक्षा। शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। साथ ही अपनी शिक्षा को करियर के लक्ष्यों से अगर हम जोड़ते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि डिग्री से ज्यादा महत्व व्यवहारिक अनुभव और कौशल का है। अपना कोई लक्ष्य बनाएं, तकनीक के साथ और समय के साथ खुद को बदलना और नए नए कौशल सीखना आज बेहद जरूरी हो गया है।

सही करियर चुनने में पहला कदम खुद को समझना होता है। अपनी शक्तियों, कौशलों, रुचियों और मूल्यों का आकलन हमें स्वयं करना होगा। करियर यात्रा शुरू करना किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है। आज हम जो निर्णय लेंगे वही हमारे भविष्य को आकार देगा। करियर का रास्ता चुनने का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन भर के लिए एक ही करियर में बंद कर रह जाएं। हम अपने करियर को बदलकर उसे नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा निर्णय पारदर्शी होना चाहिए। सही करियर चुनने के लिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हमें क्या पसंद है, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारी योग्यता किस में है। ये जानना जरूरी है कि आपके पसंदीदा करियर के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता है। केवल दुनिया भर में क्या चल रहा है ये न देखते हुए अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पर विचार करना जरूरी है और उसके बाद अमल करना। करियर चुनने के मामले में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये सोचना जरूरी है। कौन से मूल्य हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे, किस प्रकार की कार्य संस्कृति और सोच हमें अपना पसंदीदा करियर दिलवा सकती है, ये हमें ही अपना आकलन कर पहचानना होगा, तभी सही करियर का चुनाव हो सकता है।

अपना क्या फील्ड चुनना चाहते हैं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आप किससे प्रेरित हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने अथक प्रयास किया या केवल सपने देखे? क्या उच्च वेतन आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है या कार्य और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन ही हमारा मूल मंत्र है? क्या हम करियर के बहाने दुनिया घूमना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ रहकर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे व्यवसाय करना चाहते हैं या ग्रामीण इलाकों में जाकर ग्रामीणों की सेवा करना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें आपको खुद से करना होगा। हर कोई सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की नौकरी करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ लोग 24 घंटे बिजी रहकर जीवन यापन नहीं कर सकते, तो कुछ कम वेतन में नौकरी नहीं करना चाहते। यानी जब हमें ये अंदाजा हो जाए कि किन कैरियर के लिए कितनी शिक्षा की जरूरत है और उसी के अनुरूप अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा और अपना कैरियर हमें तलाशना आ जाए, तो समझो हमने आधी यात्रा पार कर ली है। अपनी शिक्षा और करियर का चुनाव सोच समझकर करना भविष्य की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी आपका जीवन आगे बढ़ सकता है।

भटती भटते भृंग होनी मिठी तुझिया मिटू न जावे रस रस ले लाके।

0: वंशवेल या चित्रपटासाठी कीर्ती शिलेदार आणि मीना पारुलेकर निकम यांच्या आवाजात सौमित्र यांची रचना श्रोते आताच आपण ऐकलीत. या रचनेला संगीत दिलं होतं अमित राज यांनी. आणि याबरोबरच गीतगंगा हा कार्यक्रम आम्ही इथेच समाप्त करीत आहोत. FM बँड 100.6 MHz आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे. ऑल इंडिया रेडिओला 90 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या आनंदात आकाशवाणी नागपूरच्या प्रख्यात निवृत्त अनाउन्सर आणि न्यूज रीडर डॉ सुरेखा ठक्कर यांची मुलाखत प्रसारित करीत आहोत.
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष के अंतर्गत आकाशवाणी नागपुर की सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका और न्यूज रीडर सुरेखा ठक्कर, इनसे श्रद्धा भारद्वाज की भेंट वार्ता.
2: नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो जैसे ही हम कहते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ हमें आवाजें याद आती हैं, हमें उनका बोलना याद आता है, उनकी अदाएं याद आती हैं. खास तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के 90 साल अब पूरे हो रहे हैं. आज हमारे साथ हैं यानी ऑल इंडिया रेडियो नागपुर की वरिष्ठ उद्घोषिका, उसके बाद वो न्यूज रीडर बनी और उसके उपरांत लगभग 3 यूनिवर्सिटीज में आप वाइस चांसलर रही. तो ऐसे व्यक्तित्व की धनी आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुरेखा ठक्कर. जैसे ही मैंने नाम लिया आप जान गए होंगे और जैसे ही वो बोलेंगी आप उनकी आवाज को रिकॉल करेंगे. नमस्कार मैडम.
3: नमस्कार जी.
2: हाँ, तो बहुत दिनों बाद आप आई हैं और ऐसे अवसर पर आई हैं जब हमारे ऑल इंडिया रेडियो की आयु है 90 साल.
3: जी जी, जी.
2: हाँ. तो इस 90 साल में कुछ साल आपके इसी परिसर में गुजरे होंगे कि जब आप अंदर आई होंगी बाहर गई होंगी.
3: जी, 90 सालों में. हाँ, इन 90 सालों में करीब 3 दशक मैंने यहाँ पर काम किया है. शुरू में 5 साल करीब कॉन्ट्रेक्चुअल था, उसके बाद 1975 में मैंने ज्वाइन किया आकाशवाणी. और उन दिनों दोनों तरफ अ केंद्र और ब केंद्र हुआ करता था मराठी के लिए.
2: अभी भी है.
3: हाँ. तो दोनों भाषाओं के लिए बायलिंगुअल अपॉइंटमेंट था हमारा, तो अच्छा, मराठी अच्छा. और हिंदी के लिए.
2: हाँ.
3: तो 75 से मैंने ज्वाइन किया. बहुत सुंदर अनुभव थे. दरअसल मैंने जब ज्वाइन किया, शुरुआत जो मेरी हुई वो मैंने रेडियो आर्टिस्ट की तरह शुरुआत हुई. तो पहले ऑडिशन दिया जब कॉलेज में थे. ऑडिशन में सब फ्रेंड्स के साथ 2-4 लोगों ने फॉर्म भरे थे, मैं अकेली उसमें से चुनी गई थी. तो मैं आर्टिस्ट बनी. यहाँ शुरुआत हुई और पहला ही ड्रामा जब कर रहे थे तो मेरे साथ मनमोहन भटनागर जी थे और मीनाक्षी जोशी जी थी जो ड्रामा की रिकॉर्डिंग कर रही थी उस तरफ से, शीशे के उस तरफ थी. और मैं ड्रामा कर रही हूँ, पहला ही है, 2-4 डायलॉग्स थे, छोटा सा काम था मेरा. और अचानक मैंने महसूस किया कि मैं हंस नहीं पा रही हूँ. खिलखिलाकर हंसने वाला एक सीन था, वहीं से शुरुआत थी उस सीन की. मैं हंसी नहीं पा रही थी. फिर मीनाक्षी जी ने वहां से इशारा किया, रुको रुको. फिर वो आई, उन्होंने कहा कि मैं हंसती हूँ, फिर तुम डायलॉग

0: बोलना, जैसे कि मैं ही हंसी और फिर डायलॉग, तो वो पहला अनुभव बहुत मजेदार रहा।
1: बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे ना उस समय,
0: हाँ,
1: उस जमाने के आर्टिस्ट
0: उस जमाने
1: जो
0: के मुझे याद है गणेश प्रसाद बिजौर थे, जो बहुत अच्छे लेखक थे, इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा कार्यक्रम का संचालन करते थे, उनसे मैं बहुत सीखी। और उन्होंने एक नाटक तो ऐसा मेरी आवाज में, उनका कहना था कि मेरी आवाज में दर्द है, एक नेचुरल दर्द होता है वो, तो कहने लगे कि मुझे तुम्हारी आवाज का दर्द बहुत पसंद है और मैं एक नाटक लिख रहा हूँ।
1: जी
0: और आप यकीन नहीं करेंगे, उस नाटक में, पूरे नाटक में मैं रो रही हूँ, बैकग्राउंड में मेरा रोना चल रहा है चल रहा है, कुछ डायलॉग्स हैं, फिर रो रही हूँ रो रही हूँ। तो एक ऐसा प्रयोगात्मक उन्होंने नाटक भी किया
1: जी
0: था।
1: जी जी
0: तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग थे हमारे साथ जो हमने उनसे बहुत सीखा।
1: जी
0: वैसे ही आकाशवाणी से मैंने बहुत कुछ सीखा।
1: जी
0: सबसे पहले तो अनुशासन सीखा, टाइम मैनेजमेंट यानी समय का समायोजन कैसे करना है वो सीखा। उसके बाद भाषाओं का, जो भाषाओं की तरलता जो है, हिंदी में हिंदी जैसी हिंदी बोली जाए, मराठी जैसी मराठी बोली जाए, उर्दू जैसी उर्दू बोली जाए, उर्दू
1: एक्सेंट
0: भी,
1: बराबर हो।
0: हाँ उर्दू भी बोलनी पड़ी। यहाँ एक कार्यक्रम शुरू हुआ था महफिल नाम का, नया नया कार्यक्रम था, तो कोई वैसे आर्टिस्ट उनके पास ज्यादा थे नहीं, तो उन्होंने हर एक प्रोग्राम में, साप्ताहिक कार्यक्रम था, हर एक प्रोग्राम के अंत में 5 मिनट की एक झलकी हुआ करती थी। उस झलकी में भटनागर जी होते थे शायर और मैं उनकी बेगम। हाँ, और
1: अच्छा।
0: वो बेगम का रोल करना है तो उर्दू अच्छी आनी चाहिए। और जमालुद्दीन साहिल साहब थे जो लेखक और प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो कार्यक्रम के इंचार्ज थे उर्दू
1: जी
0: के, तो वो लिखा करते थे वो 5 मिनट की झलकी करंट टॉपिक पर, और हम लोग उसको परफॉर्म करते थे
1: जी
0: और बहुत ज्यादा पॉपुलर था। मुझे उर्दू में खत आते थे, हालांकि
1: ओहो
0: मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन वो एक ऐसा जमाना भी था।
1: तो आर्टिस्ट से फिर उद्घोषक का तमगा कब मिला फिर?
0: हाँ, वो फिर आर्टिस्ट, ये भी सब आकस्मिक हुआ। एक दिन अचानक मैं जॉब कर रही थी, स्कूल में थी, अचानक शाम को बिजोर जी का फोन आया। हम उनको चाचा जी कहते थे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों आया फोन, तो उनका फोन आया और वो कहने लगे कि विविध भारती हमें उद्घोषक चाहिए है और तुम जल्दी से कल मिलने आओ। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैं आकाशवाणी आई मिलने के लिए, फिर उन्होंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से मुझे मिलवाया और मुझे कार्यक्रम के लिए यानी उद्घोषिका के इस पर कॉन्ट्रैक्ट देने लगे। तो उस तरह से मेरा विविध भारती के लिए पहले चयन हुआ।
1: जी तो उस समय के अनाउंसर्स, उस समय के प्रोड्यूसर्स, उस समय के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, उस समय की कुछ आपको यादें हैं और उनके साथ बिताए कुछ पल यदि आप
0: हाँ,
1: हमसे शेयर
0: मैंने
1: करें?
0: देखा कि उस समय बहुत डेडिकेटेड लोग थे, यानी
1: उनके
0: उन्हें
1: नाम भी ले सकते हैं।
0: तो ऐसा था कि रचनात्मकता थी, उसके बाद डेडिकेशन था। उनसे हम लोग डबिंग सीखे। उन दिनों का डबिंग बड़ा मुश्किल होता था, कंप्यूटर्स वगैरह तो थे नहीं।
1: मेल्ट्रॉन मशीन्स होंगी।
0: हाँ, तो वो मशीन सारे लगे हुए, चार चार मशीन लगा के हम डबिंग कर रहे हैं। एक पर इफेक्ट्स है, एक पर म्यूजिक है, एक पर रिकॉर्डिंग है, और चौथे टेप में हम पूरा ड्रामा उसको कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के पास जाने का भी मौका मिला। मुझे आकाशवाणी के कारण कई बाहर के कार्यक्रम भी बहुत मिले,
1: जी
0: बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। काफी सारे संगीत के कलाकार, वादक कलाकार, हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव
1: शर्मा
0: कुमार शर्मा, उसके बाद गुलाम अली साहब का कार्यक्रम, बिस्मिल्ला खान साहब का कार्यक्रम, ये भी मुझे आकाशवाणी के बदौलत ही मिला। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मेरी आवाज बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा संचालन करती थी, लेकिन मेरी पहचान जो बनी वो आकाशवाणी के कारण
1: जी
0: बनी।
1: नहीं, मैं आकाशवाणी में खास तौर पर काम करते हुए आप उद्घोषक रही, उस समय आपने बहुत सारे यानी उद्घोषणा के अलावा भी बाकी बहुत सारे हमारे विभाग होते हैं,
0: जी,
1: हाँ उसमें भी आपने काम किया होगा, या कहीं ना कहीं आप आर्टिस्ट के तौर पर गई होंगी,
0: आर्टिस्ट
1: तो
0: के
1: उस
0: तौर
1: समय के
0: पे,
1: लोगों की बातें, उनका याद आप बताइए।
0: हाँ, उस समय ऐसा था कि हम लोग नाटक करते थे तो काफी रिहर्सल्स किया करते थे। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट आई और स्क्रिप्ट पढ़ के चल के तुरंत रिकॉर्डिंग कर लिया, वैसे नहीं होता था। काफी मेहनत, 2 दिन 3 दिन, हालांकि काफी सीनियर कलाकार भी होते थे उसमें, वरिष्ठ कलाकार, लेकिन सब मेहनत करते थे। और ट्रांसमिशन ड्यूटी में ऐसा था कि ट्रांसमिशन ड्यूटी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। तो पढ़ाई के लिए जैसे ट्रांसमिशन खत्म हो गया, बाद में 1.5-2 घंटा समय है मेरे पास, तो वहां मैं पढ़ा करती थी, तो एक शांति वाला एटमॉस्फेयर हुआ करता था। और उसी शांति से एक प्रोग्राम का जन्म हुआ जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला,
1: आकाशवाणी
0: एनुअल अवार्ड जो मिला वो ऐसा हुआ कि एक दिन ट्रांसमिशन खत्म

0: होने के बाद सारे मशीन जब चलते हैं तो मशीन बंद होने के बावजूद एक हल्की सी हम सी आवाज आती है ना मशीन्स में से, तो मैंने सारा बंद करके टेप डेक को भी हाथ लगा के आवाज बंद की उसकी। उस समय अचानक मुझे महसूस हुआ कि ये कैसी अजीब सी शांति है,
1: नीरव शांति,
0: नीरव
1: बिल्कुल
0: शांति, और उसमें ये कैसे संभव है कि जो बहरा होगा आदमी जिसको सुनाई नहीं देता उसको कैसा लगता होगा। और उस पर से ये जन्म हुआ जिस कार्यक्रम का, जिसका

0: तो पॉज जानबूझकर दिया था, और श्रोताओं को हमने ये कहा था कि कभी सोचा है आपने कि अगर सुनाई नहीं देता है तो कैसा लगता है? और ये कहने के बाद वो पॉज आया 5 सेकंड का, और उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज जोर से, और निवेदक ये कहता है कि ये जो बच्चा रो रहा है ना, वो इसलिए ज्यादा जोर से रो रहा है कि वो सुन नहीं पा रहा है। वहां से वो कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद हमने उस पर काफी मेहनत की थी, उसमें ENT सर्जन्स का ओपिनियन कि ये क्यों होता है, अनुवांशिक कितना है, उसके बाद इसको क्या किया जा सकता है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, और इस प्रोग्राम को लोकप्रियता भी बहुत मिली और सामाजिक दृष्टिकोण भी एक डेवलप हुआ उसमें।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके साथ काम करने वाले आप ए चैनल में हैं, बी चैनल में, और कोई आपकी उद्घोषिका रहेंगी आकाशवाणी में?
0: हाँ, उद्घोषिकाएं मेरी सहेली, हमारे एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें मैं, अंजलि दुर्गकर, वैशाली बोधनकर, ये हमारा तो खास ग्रुप था, और प्रभा देउस्कर भी शामिल थी उसमें, लता कुलकर्णी थी, 2-4 साल हमसे सीनियर थी वो, क्योंकि वो पहले अपॉइंट हुई थी। तो इस तरह से मेरी सहेलियां, और उन दिनों एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ करता था, एक दूसरे के लिए खाने के डब्बे ला रहे हैं, तुम क्या लाओगी मैं क्या लाऊंगी, इस तरह से चलता था।
1: मैडम, न्यूज रीडिंग एक कठिन जॉब है जहां पर आप संकलन भी करते हैं न्यूज का।
0: हाँ, संकलन होता था, ट्रांसलेशन होता था, यानी उसको अंग्रेजी में जो संकलन हुआ उसका, न्यूज का, उसका संकलन करके उसके बाद ट्रांसलेशन करके उसको हेडलाइंस वगैरह दी जाती थी उसका पूरा।
1: कई बार ऐसा रहता होगा कि रिसेंट कुछ हुआ और आपको उसी समय अनाउंस करना है, ऐसे बहुत सारे अनुभव आपके पास।
0: हाँ, तो ऐसा भी हुआ कि अचानक किसी की डेथ हो गई है, या अचानक कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ है, या उस समय ऐसा होता है कि एडिटर या करस्पॉन्डेंट या मेरा कलीग, मेरे न्यूज में तो मनोज क्षीरसागर छोटे भाई की तरह थे मेरे, तो हमारी बहुत दोस्ती भी थी और हम लोग साथ में बहुत काम भी किया करते थे, एक दूसरे का कार्यभार भी संभाल लिया करते थे, तो ये लोग दौड़ के आते थे।
1: अच्छा।
0: और पूरी न्यूज रेडी रहती थी, वो सामने लाके ऐसे रख दिया करते थे, तो मैं माइक से जैसे जो खबर पढ़ रही हूँ वो पढ़ के पूरी करूँ और फिर उस कागज को उठा के उसको पढ़ना शुरू करना है, और कुछ और है तो वो इशारे से बता देते।
1: कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप लेट हो गई और दौड़ भाग करके आपने संकलन किया और प्रेजेंट किया?
0: अरे, दौड़ कर आई हूँ मैं एक बार बहुत मजेदार किस्सा हुआ था कि उन दिनों की बात है, तब तो ऐसी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी हर एक के पास एक एक, तो घर में एक लूना थी साथ में, तो मेरा भाई भी चला रहा है, मेरे पति भी चला रहे, मैं भी चला रही। अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी है, 5:30 बजे मुझे आकाशवाणी पहुंचना है, पेट्रोल खत्म गाड़ी का, और विंटर का टाइम था, और सर्दियों में इतना कोट और स्वेटर और क्या क्या पहन के मैं निकली हुई, और मैंने फिर सोचा कि अब अगर मैं, यानी कोई संभावना ही नहीं थी कि कुछ मुझे कोई मिले या पेट्रोल ले सकूं, गाड़ी वहीं अंदर एक तरफ रख दी कॉर्नर में और दौड़ के निकली मैं। वो अच्छा था कि मैं रनिंग कर लिया करती थी उन दिनों, यानी मैं स्पोर्ट्स में थी पहले, दौड़ के आई हूँ, तो मैं बड़ी मुश्किल से 3 मिनट पहले पहुंची हूँ ट्रांसमिशन से, और उस समय ड्यूटी ऑफिसर मन्ना जी थे
1: जी,
0: तो मन्ना जी, अब वो यहाँ का एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है कि अगर अनाउंसर किसी कारणवश नहीं पहुंचता, एक्सीडेंट ही हो गया मान लीजिए, तो जो भी व्यक्ति वहां पर उपलब्ध है उसको ट्रांसमिशन शुरू कर देना है किसी भी तरह से, फिर वो ड्यूटी ऑफिसर हो, इंजीनियर हो। तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि शांत रहिए, मैंने ये सब रखा है, सब इशारे से बात हुई, सब लगा हुआ है। उनका कहना ये था कि अब शांति से आप स्थानापन्न हो जाइए और आप काम शुरू कीजिए। फिर मैंने सांस ली, उन्होंने पानी भी मंगवा के रखा था, पानी पीकर मैंने ट्रांसमिशन शुरू किया। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये जो अनुशासन है और ये जो डेडिकेशन है, वो ट्रेनिंग से लेकर ज्वाइन होने से लेकर ये हम लोगों में इम्बाइब किया जाता था कि ये आपको करना है
1: जी,
0: ये अनुशासन है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, कम वॉट में शो मस्ट गो ऑन
1: जी, बिल्कुल।
0: और शो मस्ट गो ऑन का मैंने देखा कि मेरी ड्यूटी में रहते हुए ये बिजोर चाचा, जो हम चाचा कहते थे ना, बहुत अटैचमेंट हो जाती थी, एक तो सीनियर थे, उनसे सीखा भी, तो गुरुवत थे मेरे, और मेरी और उनकी ड्यूटी साथ में लगी, वो सीनियर हो गए थे, उनको आंखों में भी कुछ परेशानी थी, तो अगर उपलब्ध है तो दो लोगों को ड्यूटी लगाते थे, उनके साथ कोई एक हुआ करता था यंगर, तो मैं यंग लड़की उस समय और चाचा जी काफी बुजुर्ग, तो ड्यूटी पर वो आए नहीं, और वो यहाँ पास में एक जगह है सदर, वहां से वो जब आते थे सुबह की ड्यूटी में जलेबियां लेकर आया करते थे, इस तरह से प्रेम हुआ करता था। तो चंद्रबान पाटिल ड्यूटी ऑफिसर थे और उनसे मेरी बात हुई, वो कहने लगे सुरेखा तुम ट्रांसमिशन शुरू कर दो।

0: उन्होंने वैसे भी कहा था चाचा ने, मैं लेट आया तो तुम शुरू कर देना, तो मैंने शुरू कर दिया, वेट तो करना ही नहीं है. और थोड़ी देर के बाद मैंने बाहर आकर पूछा टेप लगाकर ड्यूटी ऑफिसर से कि अभी तक आए नहीं चाचा, क्या बात है? तो कहने लगे, अच्छा उन दिनों ना मोबाइल था ना लैंडलाइन भी बहुत कम थी, तो बाद में थोड़ी देर के बाद, यानी तब तक 8 बज रहे थे सुबह का ट्रांसमिशन, तो 8 बजे बिजोर चाचा के घर से मैसेज आया कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो आज शायद नहीं आ पाएंगे. और करीब घंटे भर बाद खबर आई कि वो नहीं रहे. तो मैं इतनी अटैच थी कि मुझे वहीं रोना आ गया. यहाँ कार्यक्रम संगीत सरिता या कुछ चल रहा था, मुझे रोना आ रहा है और मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ. अचानक ये हुआ तो इतने में चंद्रभान पाटिल भी काफी सीनियर थे, तो वो अंदर आए, बोलने लगे देखो रोना नहीं है, तुमको सिखाया गया है ना शो मस्ट गो ऑन. मैंने कहा हाँ. बोले ट्रांसमिशन खत्म करो. मैंने कहा मुझे जाना है, उनको देखने जाना है. तो कहने लगे ट्रांसमिशन खत्म होगा 9:30 बजे, आप चले जाना, लेकिन अब अपनी आवाज को संभालो, आवाज में कहीं रोने का स्वर नहीं आना चाहिए, आप इसको संभाले. तो उस दिन मैंने महसूस किया शो मस्ट गो ऑन वाली जो बात क्या होती है कि कोई भी मुश्किल आती है
1: जी
0: तो आपको ड्यूटी पर पहुंचना है, बारिश हो धूप हो कुछ हो, पहली बात. सेकंड ये कि अगर आप ट्रांसमिशन या काम कर रहे हैं तो आपको जारी रखना है.
1: मैडम मेरे स्टेटस में लिखती हूँ कि हवाएं जानती हैं मेरा पता
0: जी,
1: क्योंकि हम हवाओं से, हवा की तरंगों पर हमारी आवाज जाती है, वो हमें हमारे पद तक और हमें मशहूर बनाने में उतने ही सहायक होते हैं. तो श्रोताओं के बारे में कुछ बताइए और श्रोताओं के नाम संदेश भी दीजिए
0: जी. श्रोताओं का ऐसा है कि उन दिनों की बात है, जैसे आपने कहा
1: गोल्डन
0: काल, सुवर्ण काल था. तो शुरू में हम लोग विविध भारती में जैसे मधुमालती कार्यक्रम हम करते थे, वो लोकल वेरिएशन होता था, तो हर एक अनाउंसर को एक एक दिन दिया जाता था. लेकिन उन दिनों हमको नाम देने की परमिशन नहीं थी, नाम नहीं अनाउंस करते थे हम. उसके बाद शुरू हुआ नाम देना. लेकिन उन दिनों ऐसा था कि पॉपुलर जो अनाउंसर होते थे, हमको सुनने के बाद 12 बजे जैसे प्रोग्राम खत्म होता है, हम चाय पीने निकलते थे तो लोग देखने के लिए खड़े रहते थे कि अच्छा ये प्रेमा पांडे है, ये सुरेखा ठक्कर है. इस तरह से लोगों का प्यार मिला हमको
1: जी, जी, जी.
0: और कई लोग चाय पीने, अच्छा आप ये है ना, आप वो है ना, वहां चाय पीने जाते थे सामने. एक वो हुआ. और अभी 2 साल पहले यानी 2024 की बात है, यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ नागपुर में
1: जी,
0: वो था अमीन सयानी जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, और विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान और सुर संगम ने इसको आयोजित किया था. तो उसमें पदाधिकारियों का ओपिनियन ये था कि अमीन सयानी जी को तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन नागपुर के किसी लोकप्रिय उद्घोषक को भी आप सत्कार करें. तो उसमें मेरा नाम आया और मुझे इन लोगों ने कांटेक्ट किया, सत्कार हुआ, सम्मान पत्र दिया गया, वगैरह वगैरह सब हुआ. और जब मुझे बोलने को कहा गया तो उन्होंने ऐसा रेडियो जैसा एक कटआउट बनाया था, उसके अंदर मैं खड़ी हुई, जैसे मैंने सुरेखा ठक्कर का नमस्कार कहा है, तो वो पुरानी मेरी ऑडियंस, यानी मुझे रेडियो छोड़कर 23 साल हो चुके थे, लेकिन वो ऑडियंस जिस तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया, तो ये महसूस हुआ कि श्रोताओं के दिल में हम बस चुके हैं. मैं हर शुक्रवार को मधुमालती कार्यक्रम करती थी, 1 घंटे का कार्यक्रम, 16 गाने बजते थे और वही कि सुरेखा ठक्कर का नमस्कार, और उसके बाद 16 पुराने गाने बजाती थी. तो पुराने गानों में एक शुक्रवार सैड सॉन्ग्स और उसके अगले वाले शुक्रवार खुशी वाले प्रेम गीत, या लेकिन पुराने गाने. तो उन पुराने गानों को बजा बजा कर मुझे काफी लोकप्रियता मिली थी. तो वो मुझे महसूस हुई उस समय
1: उस कार्यक्रम के जरिए.
0: हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि इतने दिनों बाद भी लोगों को वो आवाज याद है और ये याद है, नाम याद है
1: जी.
0: मुझे चेहरे से पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं.
1: तो इतना अरसा बीत गया, अब 90 साल हो चुके हैं. तो 90 साल के इस अवसर पर, सुअवसर हम कह लें, इस वक्त आप हमारे सुनने वालों को या हमारे ब्रॉडकास्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगी?
0: बस मैं ब्रॉडकास्टर्स को यही कहना चाहूंगी कि जो पुराने समय का एक डेडिकेशन था, यानी सीरियसनेस था कार्यक्रमों के प्रति, प्रोग्राम के प्रति, ऐसा नहीं कि कुछ करना है इसलिए कर दिया, उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी ब्रॉडकास्टर की. और श्रोताओं का ऐसा था, श्रोता भी काफी इन्वॉल्व हुआ करते थे. उनकी फरमाइश देखो या उनके पत्र देखो, मुझे याद है बॉक्स भर भर के पत्र आया करते थे. तो ये एक माहौल था. तो मैं जानती हूं कि एक ब्रॉडकास्टर काफी इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर किसी सामाजिक बात की बात हो या कोई और चीज हो, तो सामाजिक रूप

0: से भी एक ब्रॉडकास्टर काफी जिम्मेदारी निभा सकता है अगर वो प्रभावी रूप से उसको प्रस्तुत करे
1: जी।
0: और दूसरा, श्रोता भी इन्वॉल्व तब होंगे जब आप वो नजदीकियां बनाएंगे। अब आप लोगों के आकाशवाणी में अभी जो फोन इन प्रोग्राम्स वगैरह जो हो रहे हैं उसके जरिए आप लोग काफी
1: कनेक्टेड हैं,
0: कनेक्टेड हैं, और सोशल मीडिया में भी आप लोगों का काफी प्रेजेंस है, ये भी एक अच्छी चीज है। तो मेरा बस यही कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग एक जिम्मेदारी है, लिसनिंग भी एक जिम्मेदारी है, तो हम सुनवाएं, सुने, और उस तरह से जो भी हमारा सामाजिक योगदान होगा उसको हम पूरा करें। बहुत सारे OTT आ गए, बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी संगीत और न्यूज के लिए आकाशवाणी को प्रेफर किया जाता है, तो हम इस पर ध्यान दें। बस यही मैं चाहती हूँ कि ब्रॉडकास्टर इस पर ध्यान दें, क्योंकि आज भी हम उसमें इतने ही लोकप्रिय हैं।
1: जी जी जी, लोकप्रियता बरकरार रहे ऐसी उम्मीद करते हैं। आज आप आई और इतने अरसे बाद यहाँ पर आपने अपने विचार रखे, इसलिए बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद देते हैं आकाशवाणी में आने के लिए और अपने विचार रखने के लिए।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष के अंतर्गत आकाशवाणी नागपुर की सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषिका और न्यूज रीडर सुरेखा ठक्कर, इनसे श्रद्धा भारद्वाज की भेंट वार्ता।
3: FM बैंड 100.6 MHz वर आकाशवाणी नागपूरचं हे विविध भारती केंद्र आहे। 9:20 झालेली आहे। ऐकूया प्रायोजित कार्यक्रम संवाद योजनेच्या साक्षरतेसाठी।
4: ऐका ऐका नागपूर जिल्हा माहिती कार्यालयातून आकाशवाणीवर संवाद।

एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिश्र संगीत। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं अमित मिश्रा की आवाज में अभेंद्र कुमार उपाध्याय के लिखे गीत से।

अंकिता भरवानी की आवाज में अब आप सुन रहे थे अन्विता दत्त का लिखा गीत। श्रोताओं, मिश्र संगीत कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जावेद अली की आवाज में सुहित अभ्यंकर का ये नगमा भी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, सुनते हैं एक निवेदन। अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। कार्यक्रम है नीलावार सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फोन नंबर है 694-006725601081 और 2529-266। तो हमें फ़ोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान। मिश्र संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं अगला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज़ में। बोल है सैयद अमीर हुसैन सोहम मुजुमदार के।

दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सपनों के रंग भी बदलने लगते हैं। एजुकेशन, करियर, प्यार, पहचान, हर किसी की अपनी मंजिल होती है। कई बार रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर सपना सच्चा हो तो राह भी मिल जाती है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सुनते हैं एक ऐसा ही प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं, नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे इस कार्यक्रम के बारे में एक निवेदन सुनिए। अगर आप अपनी पसंद के पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो आप हमें आज यानी बुधवार को फोन कर सकते हैं दोपहर 12 बजे से लेकर 12:45 के दरमियान। कार्यक्रम है नीलावर सारीज हेलो सुनहरे नगमे। हमारे फोन नंबर है 6940067 या 2560101 या फिर 2529266। तो हमें फोन करना ना भूलिएगा आज दोपहर 12 बजे से 12:45 के दरमियान।

दोस्तों, कुछ सपने अपना दिल भी देखता है, किसी खास के साथ जिंदगी बिताने का सपना। जब प्यार होता है तो हर सपना रंगीन लगने लगता है, सपनों से भरी आंखों में किसी का चेहरा बस जाता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हकीकत में हमारे साथ तो नहीं होते, लेकिन हमारे ख्वाबों में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो कोई पहली मोहब्बत हो सकती है, कोई अधूरी कहानी, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो वक्त की भीड़ में कहीं पीछे छूट गया है।

दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि सपने सिर्फ रातों में आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कुछ लोग हमारी जागती आंखों में सपनों की तरह बस जाते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़, उनकी यादें, सब कुछ दिल के किसी कोने में चुपचाप महकता रहता है। और जब तन्हाई थोड़ी और गहरी हो जाती है तो वही यादें किसी गीत का रूप लेकर हमारे सामने आ जाती है। तो आइए सुनते हैं आपने अपने अपने उन अधूरे ख्वाबों, उन प्यारी यादों और उन दिल के अनचाहे एहसासों को महसूस करते हुए ये सदाबहार गीत।

श्रोताओं, कभी कभी कुछ ख्वाब इतने खूबसूरत होते हैं कि हम चाहते हैं वो ख्वाब कभी टूटे ही नहीं। एक ऐसा ख्वाब जिसमें मोहब्बत हो, बारिश की हल्की बूंदे हो, फूलों की खुशबू हो और किसी अपने का साथ हो। जिंदगी की सच्चाई अक्सर बहुत कठोर होती है, लेकिन ख्वाबों की दुनिया बेहद नरम और बेहद हसीन होती है। दोस्तों, कई बार हम किसी को पहली बार देखते हैं और दिल उसी पल एक सपना बुनने लगता है। एक ऐसा सपना जिसमें सिर्फ दो लोग होते हैं और उनके आसपास पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। तो आइए कुछ पल के लिए हकीकत से दूर चलते हैं और खो जाते हैं एक बेहद खूबसूरत ख्वाब में।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है कि जिसे देखकर दिल खुद से ही एक सवाल पूछता है कि क्या ये सच है या फिर कोई बेहद खूबसूरत सपना। कुछ मुलाकातें इतनी खास होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमारी अधूरी दुआ सुन ली हो। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में खुशियों की वजह बन जाता है, जब उसकी एक मुस्कान दिन भर की थकान मिटा दे, जब उसका साथ किसी हसीन ख्वाब जैसा लगे, तब दिल यही गुनगुनाता है कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।

श्रोताओ, रात की खामोशी में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब कभी कभी किसी की याद चुपके से हमारी पलकों में दस्तक देती है, एक सपने की तरह। एक चेहरा जो शायद कभी अपना नहीं था, फिर भी दिल के बहुत करीब था। कभी उसकी हंसी याद आती है, कभी उसकी बातें, या कभी फिर उसका एहसास जो सपनों में आकर दिल को बेचैन कर जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारे ख्वाबों से कभी नहीं जाते। वो हर रात किसी अधूरी कहानी की तरह लौट आते हैं, और फिर दिल वही सवाल बार बार करता है।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो पहली बार ही हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। पहली मुस्कान, पहली मुलाकात, पहली धड़कन और पहला प्यार। हाँ जी, पहला प्यार सच में किसी नशे जैसा होता है, जहाँ हर पल बस उसी का ख्याल रहता है। हवा भी खूबसूरत लगने लगती है, बारिश भी गीत गुनगुनाने लगती है, और दुनिया दुनिया तो जैसे थोड़ी और हसीन हो जाती है। ये उम्र भी कितनी खास होती है, जब किसी के एक दीदार से

पूरा दिन बन जाता है और उसकी एक झलक के लिए घंटों का इंतजार भी आसान लगने लगता है। आइए अपने जीवन के उस पहले एहसास को याद कीजिए जब दिल ने पहली बार किसी के लिए धड़कना सीखा था और सपने देखने सीखे थे। सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, कभी कभी प्यार की और सपनों की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। दिन में जिससे बात करने की हिम्मत नहीं होती, वो रात के सपनों में बेझिझक आ जाता है। सपनों की दुनिया कमाल की दुनिया है। वहां न कोई दूरी होती है, न कोई झिझक, न कोई रोक टोक। जिससे दिल अपनी बात कह नहीं पाता, उसे ख्वाबों में देख कर दिल मुस्कुरा उठता है। और कई बार तो ये सपने इतने रंगीन होते हैं कि सुबह आँख खुलने के बाद भी उन्हीं का असर बना रहता है। मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर अभिनीत सत्या का ये गीत थोड़ा शरारती है, थोड़ा देसी अंदाज वाला है और सपनों वाली मोहब्बत का एक अलग ही रंग दिखाता है। तो आइए थोड़ी मुस्कान, थोड़ी मस्ती और ढेर सारे सपनों के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो बिखरी हुई भावनाओं को धीरे धीरे सहेजने लगता है। उसकी मौजूदगी जैसे ठहरी हुई जिंदगी में नई सुबह ले आए। उसकी बातें जैसे दिल के पुराने घाव पर मरहम बन जाए और फिर दिल चाहता है कि उन पलों को सवार लिया जाए, उन यादों को सजा लिया जाए और उस एहसास को हमेशा के लिए अपने करीब रख लिया जाए। मोहब्बत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो बहुत खामोशी से दिल में उतरती है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली धूप खिड़की से कमरे में आती है। तो आइए दिल के अधूरे पलों को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

तो दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ सपने होते हैं, छोटे बड़े, कुछ अपने लिए और कुछ उन लोगों के लिए जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं। कभी ये सपने एक बेहतर कल के होते हैं, कभी अपने घर के होते हैं, कभी कामयाबी के होते हैं और कभी किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होते हैं। जब प्यार सच्चा होता है तो इंसान सचमुच चांद तारे तोड़ लाने की बात करने लगता है। उसे लगता है कि वो दुनिया की हर खुशी अपने चाहने वालों के कदमों में रख सकता है। तो आइए अपने उन सपनों को याद कीजिए जिनके लिए आप आज भी मेहनत कर रहे हैं।

0: यश मिळवलं आहे. आयसीसी पुरुषांची नवीन T20 सांघिक क्रमवारी जाहीर झाली आहे. या यादीत भारत अव्वल स्थानी कायम आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतानं 275 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावलं आहे. याबरोबरच हे ठळक बातमीपत्र संपलं. यापुढील प्रादेशिक बातमीपत्र संध्याकाळी 6:05 ऐकता येईल. नमस्कार.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है. इससे पहले भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया. राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं. राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है. इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है. इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं. यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा. मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने भी इस्तीफा दे दिया है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है. पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोंडकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा. उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है. उधर केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पोस्ट पे श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है. इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी. हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहियुद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है. पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है. हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. मामले की जांच जारी है. सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल एक संशोधित वीडियो का खंडन किया है. इसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था. पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की. यह वार्ता ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष विराम समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई. चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षा निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं से हुई प्रगति के कारण यह निर्णय लिया गया है. घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई. अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 77,123 पर, जबकि निफ्टी 65 अंक की वृद्धि के साथ 24,098 पर था. आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही

0: ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल, बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी की कुछ गीत रचनाएं लेकर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन से, आवाजें किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर।

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ,
2: किक किक किक किक, ट्रेडनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

कार्यक्रम का अगला गीत साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के हैं। फिल्म का नाम है जाल।

ये स्वर लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म जाल के लिए थे। कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में है, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आज और कल।

0: धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में, स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम है आज और कल। कृपया से दोबारा सुने। कार्यक्रम का अगला गीत जगजीत कौर की आवाज में है। फिल्म का नाम है शगुन। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार खयाम साहब।

जगजीत कौर की आवाज में ये था फिल्म शगुन का गीत। आइए सुनते हैं एन दत्ता का संगीत, मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजें। फिल्म का नाम है दीदी।

से ख्यालात की कीमत।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार साहिर लुधियानवी को चुना है।

0: कभी कभी।
1: ये स्वर लता मंगेशकर का था, फिल्म का नाम था आंखें। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे रवि।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
3: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
5: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
6: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की रचना, रवि के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है वक्त और स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
2: तुमसे नहीं।
1: मैंने देखा है कि

0: जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो।
1: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
0: कहो, तुम भी कहो।
1: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
0: नहीं, खुद पे नहीं,

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म प्यासा से हमने लिया है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन सचिन देव बर्मन की है।

हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म प्यास हमें सुना। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज। फिल्म का नाम है धर्मपुत्र। गीत रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत रचना एन दत्ता की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म काजल का गीत रचना साहिर लुधियानवी की और तर्ज रवि की।

आपका अपना कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? और सुरीले सफर के इस कार्यक्रम में आप बैठे हैं सुनने को ये कार्यक्रम। चलिए तो सुरीला सफर शुरू करते हैं और आप मेरे साथ हैं, यकीनन है ना? आपने वादा किया था मुझसे कि इस सफर में आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे हमेशा, तो वादा निभाइएगा। भूलना नहीं है वादा। तो देखिए, अब जब सफर है जिंदगी का, तो इसमें सुख भी है, दुख भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, नफरत भी है, बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, जीवन की कटु सच्चाइयां भी है और जीवन की सच्चाई भी है, जीवन की सत्यता भी है। इस सभी को हमें याद रखना होता है अपनी जिंदगी के इस सुरीले सफर में। और हाँ, आज के इस कार्यक्रम में यानी इस सफर में हमने एक प्रयोग भी किया है। अब वो प्रयोग आपको अच्छा भी लगेगा। प्रयोग ये है कि हमने जो गीत आज चुने हैं हमारी इबारत के मुताबिक, है ना, तो उन सभी गीतों में एक खास आवाज आपको सुनने को मिलेगी। वो आवाज किसकी है ये आपको हमें बताना होगा। तो चलिए आज की इबारत भी हम पढ़ देते हैं। जो हमारे दोस्त फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज इबारत क्या लिखी गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी हम बता दें कि आज हमने लिखा है, दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ाओं में उलझी जिंदगी अक्सर खुद को भूल जाती है। ये मौसम, ये बहार, ये खूबसूरत शाम, ये तन्हाइयां सब बेकार लगने लगते हैं। ओरे मन, एक तरफ दुख दर्द है लेकिन दूसरी तरफ महबूब की पुकार भी तो है। महबूबा देखो, कोई तुम्हें पुकार रहा है इस तरह, तो उसे महसूस करो, रूह को सुकून मिलेगा। यकीनन एक बार, सिर्फ एक बार बस इस प्यार, इस प्रकृति को महसूस कर लो। बाहर भी है, प्यार भी है और दरिया की रवानगी भी। सुनो, प्यार और प्रकृति केवल बाहर की दुनिया नहीं है, वो हमारे भीतर का ही विस्तार है। जब हम बाहर प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं। और हाँ, ये सच है कि मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरता जाता है। इस शाश्वत सत्य को पहचान लो और हर पल को जी लो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, ये सफर आपका है। आइए शुरू करते हैं सुरीले सफर को कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे मदन मोहन। तो ये आवाज आपने पहचान ली होगी, किसकी आवाज है ये आपको बताना है। हमारे बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं कि हाँ मंदाकिनी जी, हम सुरीले सफर में हम भी आपके साथ हैं और स्वागत और नमस्कार करते हैं, और उन्होंने इस गीत को पहचान भी लिया था कि ये गीत कौन सा है। तो आप सभी इस सफर में हमारे साथ हैं, हम उम्मीद करते हैं। और एक श्रोता लिखती है कि बदलते हुए मंजर का नाम है जिंदगी, और दुख के कितने ही झोंके क्यों न आए, जीवन एक राग में बजने वाला साज नहीं है, इसके साथ सभी रंग हैं, खुशी के, गम के, मिलन के, जुदाई के। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन एक मुकम्मल इंद्रधनुष है, महबूब की पुकार से मन में सतरंगी बाहर खेल उठती है। जीवन का एक सच ये भी है कि दुख और असफलता में व्यक्ति या तो मजबूत बनकर उभरता है या फिर उसका तन जीता रहता है और मन मर जाता है। आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है सखी, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आज हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। थोड़ा कयास लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए, ये कार्यक्रम में यही तो मजा है। हमारे कई श्रोता थोड़े से नाराज है कि भाई कैसे पता लगाएं, अगर हम ये गाना लिखते हैं तो पता चलता है कि कुछ और निकल आया है तो क्या हो गया। ये एक मजाक होती है हार जीत तो, लेकिन कितना मजा आता है कि आपने उन गानों को चुना तो सही। हो सकता है आपकी जो च्वाइस है, आपकी जो सोच है, या जहां तक आपने सोचा शायद वो गीत हमने नहीं चुने हो, इसमें क्या हो गया। और अगर चुन भी लिए तो और भी अच्छी बात है कि आपकी और हमारी पसंद एक हो जाती है। तो दिमाग की कसरत है ये, और जब आप दिमाग की कसरत करेंगे, जैसे गणित विषय पर हम करते हैं ना, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, तो कितना दिमागी कसरत हो जाती है, ठीक उसी प्रकार की कसरत है इस कार्यक्रम में। और इस कसरत का आनंद लीजिए ना। एक श्रोता लिखते हैं कि दुख के सागर में डूबे नैना, पीड़ा की गिरोहों में उलझी जिंदगी, कभी खुद को ही भूल जाती है, हर खुशी लगती है अजनबी, ये मौसम, ये बहार, ये शाम सुहानी, सब कुछ जैसे बेकार लगे, तन्हाई की चादर ओढ़े मन अपने ही भीतर हार लगे, ओरे मन सुन जरा वो पुकार, कहीं कोई तेरा करे इंतजार, दर्द के उस पार भी देख जरा कोई तुझसे ही करे प्यार, महबूबा की वो धीमी आहट हवा में घुलकर तुझे छूती है, रूह के सुने आंगन में आकर सुकून की ज्योति सी जलती है, एक बार तो महसूस कर ले इस प्यार, इस प्रकृति की सरगम को, बाहर भी है, दरिया भी है, धड़कन के इस आलम को, ये दुनिया बाहर जितनी सुंदर उतनी ही तेरे भीतर है, खुद से मिलना सीख ले मन, यही असली मुकद्दर है, हाँ सच है मन जी।

ना चाहे पर तन हर पल ढलता जाए, इस क्षणभंगुर जीवन में ही जीने का अर्थ निखरता जाए। और आपने लिखा है तो हर पल को गले लगा ले, दर्द में भी मुस्कान सजा ले, सुरीले सफर में आज अपने दिल को फिर से जगा ले। बहुत सुंदर लिखा है आपने, भावों का ये सागर बहता है, सुरीला सफर के इस मंच पर हर दिल खुद से मिलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जनाब आप इतने शानदार कवि हैं, आपकी कविताओं से हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए आज कौन कौन से गीत हैं।

जी हाँ, ये आवाजें लता मंगेशकर और किनकी थी आपको ही बताना है। राजा मेहदी अली खान की बोल थी और मदन मोहन का संगीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय, ये एक ही शब्द से बहुत सारे गाने होते हैं, आप कौन सा शामिल करोगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें ऐसा सोचना ही क्यों है हुजूर? आपने अगर एक ही शब्द के कई गाने निकाल दिए तो कोई गाना तो मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट से, और अगर ना भी मिले तो ये कोई पेपर थोड़ी है जहां हम पास या फेल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है जहां हम इस सुरीले सफर का आनंद लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद उस संगीत का, उस अनमोल, उन अनमोल गीतों का जो हमारे सुनहरी, जो गीत संसार है, संगीत की दुनिया है, उन अनमोल गानों का हमें सिर्फ आनंद लेना है। और उस आनंद में, खेल खेल में हम एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए आए हैं जहां आपको बताना है कि क्या इस शब्द से जुड़े गीत आपने जो चुने हैं वो हमारी पसंद से मेल खाते हैं कि नहीं, बस इतनी ही तो बात है। जैसे अभी हमारी इबारा आपने पढ़ी थी उसमें नैना शब्द भी आया था और पीड़ा शब्द भी आया था, तो ये गाने आपको मिल गए नैना वर्से रिमझिम रिमझिम, है ना, और मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बुना गया है, और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफर सुरीला तो है फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है, शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है, फिर भी हमने ट्राई किया, ये शाम की तन्हाइयां ओरे माजी हमने देखी है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार जरा फिर कह दो देखो मौसम क्या बाहर है आगे भी जाने ने तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एक आध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है, इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं दुख दर्द सागर नैना जिंदगी बाहर शाम तन्हाई मन।

0: महबूबा, प्यार, प्रकृति, रूह, सुकून, दरिया और जीवन, यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारे इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुराना सुरीला सफर में होंगे, ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है। ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व, दुख और प्रेम, विरह और प्रकृति और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हों, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर की चहक रूह को छू जाती है। बाहर प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नजारे नहीं है, बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार है। मन जितना जीना चाहता है, तन उतना ही मरता जाता है। ये शाश्वत सत्य को जीवन का सार है, पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं। तो जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाजों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो खास आवाज किसकी थी और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज किसकी है।
1: ओरे माजी

शैलेंद्र सिंह का शैलेंद्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज आपको बतानी ही है किनकी है और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी।

आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की वो बहुत ही सुरीला गीत है, और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज से आपने शानदार शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है, हम यूं कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिख दी है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर शोर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ऐ दिल जरा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलती सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रही है। तेरा हम सफर, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उस साहे को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक शांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति, बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही। वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है, हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था, कलाकार का नाम आपको बताना है, और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ ले सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि जब हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाजों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं, वो गीतकार की आवाज हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है, उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज दी है। और शायद ये भी सच है कि वो एक ही मात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज दी है। वो कौन सा गीत है? हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफर में शामिल नहीं किया है, आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं, लता मंगेशकर और एक और आवाज, फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ ये आवाज किसकी है आपको तय करना है।

जी तो आपको बताना है फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता हैं, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज़ किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद एस डी बर्मन जी की आवाज़ में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने वो कौन थी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साहब थे। जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज में है, और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज में, माहिरी मैं कासे कहूं पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें, कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, सुरीला सफर कार्यक्रम भी हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मजा तो आ रहा है, लेकिन 50% देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मजा आने वाला है। जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।

0: आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा, इसका कोई निर्देश नहीं है. किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है. तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है. हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली. किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं. अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही. आपका द्वंद्व, आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा. यही तो इस कार्यक्रम का मजा है ना, कि आपने क्या चुना, आपकी आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं. यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है, कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है. तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए. लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज है, ये फिल्म का नाम है आजाद. और हाँ, हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं.

सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं, अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए तो फिर किसका दोष? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज के धनी हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज मनोरंजन है जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने, अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज थी, सी रामचंद्र साहब की आवाज है। हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई, इसमें लता जी के साथ आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हमसे हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारे महबूबा महबूबा, तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी? बताइएगा जरूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज दी है।

0: जी, तो मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरके, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफर में हमारा साथ देते हैं, वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ कभी कभी जो दुख और परेशानी आती है उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना, वो गीत याद आया हमको, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ अपनी आवाज दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने सुना फिल्म शोले का, महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है, लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे।
1: झुके जो तेरे नैना,
0: जो ये गा रही हैं वो कौन है?

कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज़ और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर का ये गीत नजर आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द दो तीन दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं, इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हर पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइएगा कौन से शब्द हैं जो दो तीन दिनों में बार बार अपनी जगह कायम है, उसका जिक्र कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा, आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं, आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता। क्या प्यार इसी को कहते हैं? विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत के किसी, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है। ये बेकार बेकाम की चीज है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पे रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया, सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी शिरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कुछ किस्से कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफर शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूं। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश खत्म हो जाए, है ना, आप लिख पाए वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जरा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज्यादा होंगे। नहीं है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि जिंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी ही प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा, तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए। क्यों पुकार राय, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सभी जिंदगी में ही

सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख यादों सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, फिल्म का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है, और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है।

कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज में था और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

जी, ये आवाज थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए, उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थी बप्पी लाहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, किसी ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। आज का जमाना कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो काम है वो बड़ी

0: सरलता से बड़ी आसानी से हो जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। एक जमाना था जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेहनत की गई, और जब मेहनत की गई तभी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, वरना बैठे बैठे सोचने से कुछ हो नहीं सकता था। मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे रण युद्ध में कूदना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस विजय को।
1: जी

ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये चौड़ी सड़कें, ये चलता हुआ कारखाना, ये सब इसके पीछे कोई ना कोई मेहनतकश व्यक्तित्व है, उनका समर्पण है। कोई इंजीनियर दिन रात मेहनत करके इनकी डिजाइन बना रहा होगा, कोई श्रमिक पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें सजा रहा होगा। तभी आज हम बड़ी बड़ी कारखानों को चलते हुए देख रहे हैं और अपनी सुविधाओं की प्रत्येक वस्तु को अपने पास तक आते प्राप्त कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। आज के जमाने में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि कई बच्चे, कई बड़े ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो एक छोटी सी एसी कमरे में बड़े सामान्य सी कुर्सी के साथ में बैठ जाना है और काम करना है। यहाँ पर वही काम किया जा सकता है जो सरल है, परंतु कुछ नया करने के लिए जंगे मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि वो मैदान कौन सा है जिस युद्ध को लड़कर हमें अपने आप को विजित करना है। नहीं, नहीं।

ये जो लोग हमारे लिए दुनिया बना रहे हैं, ये जो लोग हमारे लिए दुनिया सजा रहे हैं, ये दुनिया बनाते समय, इसे सजाते समय उनके सपने होंगे, उनके ख्वाब होंगे कि कोई तो होगा जो आएगा हमसे और अच्छा करेगा। मेहनत करने वाला वही अच्छा करने का गुरूर रखता है और मन में एक आशा रखता है कि अभी तक जो हुआ है उससे अच्छा हम कर जाएंगे। आज हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अलग जगाता हुआ खड़ा है। उसके पहले उस पर की गई मेहनत, आज हमारा देश सारी दुनिया में गर्व से खड़ा है। उसे बनाने के लिए उस पर की गई मेहनत, प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उस इंसान को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ा, जिसने अपने आलस्य को छोड़ा और जिसने मेहनत को अपनाया और मेहनत को अपनाकर आज इतना सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दिया। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी, अभी की पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए सतत मेहनत करते रहेंगे। आज हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, कुछ कर गुजरे और इस दुनिया में अलग जगाई अपने और अपने देश के नाम की।

आगे बढ़ा हिम्मत कदम एक बार मर्द बनके तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके ठोकर की गर्द।

जो कल करना है अब कर ले, कल की किसे खबर है। ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

0: ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, ये स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की है। ये हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा

0: स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
1: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
3: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लीपुरुती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
4: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं जिया कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ। ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी

परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमरीका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सा उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था मिस्टर जॉन। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ, रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है मैंने जीना सीख लिया।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवीश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

ये स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दो गुंडे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

कार्यक्रम का अगला गीत दीपक का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम चंद्रसेना।

कार्यक्रम में पंडित भरत व्यास का गीत सुनिए। कल्याण जी वीर जी शाह की संगीत रचना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म का नाम है धूल का फूल। रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत एन दत्ता का।

वा रहे हैं फिल्म भाई बहन का गीत, युगल स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, शब्दकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार एन दत्ता हैं।

इस युगल गान के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार और मंजरी जी आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नेहा तुमको और सुनने वाले सभी सखियों और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा एक धुन बज रही थी थोड़ी देर पहले कि दोनों किसी को नजर नहीं आए।
1: हाँ
2: है ना, और चल सखी सहेली में धूम मचाए।
1: नजर तो हम नहीं आएंगे लेकिन अपनी बातों के जरिए हम सभी श्रोताओं से जुड़ जाएंगे।
2: बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और देखो हम सबसे पहले तो विषय ही बता देते हैं कि भाई शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग
1: क्योंकि बहुत जरूरी विषय है।
2: बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भर भर के संदेश भेजे हैं तो पढ़ने में मजा भी आएगा नेहा। और व्यंजन में फलों के जायके इसके बारे में हम बात करेंगे।
1: और साड़ियों का संसार, क्योंकि अब शादी के सीजन में जाएंगे तो साड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: तो आज बात होगी चिकन की साड़ियों की। और शब्द हमारे विचार आपके में हमने आज कौन सा शब्द दिया है?
2: सामंजस्य। जैसे कि हम लोग बैठ के बातें करते हैं तो प्रोग्राम में भी सामंजस्य बिठाते हैं।
1: हा?
2: तो हमारे सभी श्रोता भाई लोग अपने इस बातें लिखे हमें संदेश में और हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम सोचते हैं कि हम लोग एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो हम अकेले कहीं भी नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे, सभी मिलजुल कर।
1: बिल्कुल सभी चलेंगे, क्योंकि भाई देखो शादियों का सीजन है।
0: हाँ,
1: तो चलो चलते हैं, हम लोग तैयार तो हो ही गए बढ़िया से। चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे भोजन लगे हुए, बहुत सारे सलाद के आइटम तुम्हें दिख रहे हैं ना, आइसक्रीम दिख रही है, रसगुल्ले दिख रहे हैं ना,
0: हम तो वही सारी चीजें ही देखते हैं। पहले खाने पीने में क्या है, वही चावल दाल सब्जी रोटी, अब देखना है तो कुछ आइसक्रीम देखा जाए, गुलाब जामुन वगैरह, कुछ मिठाइयाँ देखी जाए।
1: बिल्कुल, और जाते ही हम लोग की नजर ऐसे ही पड़ जाती है कि क्या क्या चीज अच्छी है, और अगर कुल्फी दिख जाए इन दिनों तो बहुत मजा आता है। कुल्फी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है, लोग खाना भूल जाते हैं, पहले वो सब खाने लग जाते हैं। लेकिन जो शादियों के सीजन में क्या होता है नेहा, अक्सर हमने देखा है कि खाने की बहुत बर्बादी होती है। लोग प्लेटों में सब चीजें एक साथ ही परसने लग जाते हैं, एक चमचा इसका, एक चमचा उसका, एक चमचा कढ़ी का, एक चमचा दाल का, तो ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हो जाती है। फिर उसमें जब खाया, नहीं ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तो वो चीजें बचती जाती, फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह फिकती बहुत है कहना चाहिए।
0: हाँ, और बहुत सारी ले लेते हैं ऐसे, चले ठीक है सारी चीजें अगर अपने को चखने का मन भी है तो थोड़े थोड़े ले सकते हैं चखने के हिसाब से, फिर लगता है कि इतनी लाइन लग जाएगी, फिर हम कब आएंगे कैसे करेंगे, तो इसके लिए वो ज्यादा ज्यादा ले लेते हैं कि अगर अच्छी लगी तो हमें एक कटोरी खानी है तो वो पूरी एक कटोरी भर लेते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी तो एक कटोरी वेस्ट भी तो जाएगा।
1: हाँ, लेकिन वो भरते बहुत है। और इसी तरह कई तरह के सूप के स्टाइल भी दिख जाते हैं, तो टमाटर का सूप ले लिया और ये अपने दूसरा सॉस वाला सूप ले लिया, तो इस तरह से बहुत सारे सूप होते हैं, कॉर्न सूप ले लिया, तो इतनी सारी चीजें हो जाती है कि आप एक के ऊपर एक परत लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप जब अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ देते हैं।
0: हाँ, और आप अपने शरीर के अंदर भी क्या क्या छोड़ रहे हो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि खाना भी आमतौर पर शादियां शाम को होती हैं, रात में खाना मिलता है उसमें, तो रात में जब आप ये खाते हैं, तेलीय भोजन खाते हैं, सूप या ग्रिल्ड पनीर जैसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप ऐसे लेते हो कि कुछ दूसरी चीजें ले लेते हैं आप खाने के लिए, जो एकदम पूड़ी वगैरह ले ली आपने, बहुत सारी मिठाइयां खा ली, और तो ये रात में आपको परेशान भी कर सकती हैं।
1: लेकिन अब शादी में गए हैं तो कोई सोचता भी नहीं इस तरह से, बहुत कम ही लोग हैं जो इस चीजों पर ध्यान देते हैं। और कई बार नेहा देखा है कि बहुत सारे सलाद के स्टाल लगे होते हैं तरह तरह के, तो लोग उसको भी लेने लग जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि ये इतना आपको आप खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, तो वो सब चीजें आप ऐसे ही प्लेट रखते जाते हैं। कई बार तो होता है प्लेट में सलाद पर सा नहीं पसंद आया, वो प्लेट ऐसी आपने उसमें डस्टबिन जो रखा रहता है उसमें डाल दिया, फिर आपने दूसरी प्लेट ले ली, तो आजकल प्लेटों का भी एक सीमित क्वांटिटी में आप यूज करें, उसका भी अलग अलग पेमेंट
0: नहीं, होता है। मेजबानों की बात को आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपने भले ही एक सलाद खा के प्लेट नीचे रख दी है, लेकिन जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो प्लेट्स गिनकर ही पैसे लेते कई बार, तो आपने भले ही कुछ नहीं खाया उसमें लेकिन पैसे उसके देने पड़ रहे हैं, तो एक तो एक ही प्लेट यूज कर सकते हैं, और दूसरा काम ये कि थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे बुफे सिस्टम का वो रहता है, आमतौर पे सब अपना खाना खुद लेकर खाते हैं, तो ऐसे में अगर आपने एक बार अपनी प्लेट सजा ली है तो हमने तो अब तक जितना जाना है, तो वही एक सिस्टम है कि अगर आपने अपनी प्लेट सजा ली और आपने खाना शुरू कर दिया है तो आप लाइन के बीच में भी जाकर अपना खाना ले सकते हैं, आपको पूरी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा अगर ले लेते हैं तो वो खत्म होने के बाद आप फिर से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं उसी समय,
1: ले सकते हैं
0: और गर्म भी मिलेगा।
1: बिल्कुल गर्म भी मिलेगा, और जो शादियों में बच्चे खाने का जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि आप उसको सुरक्षित तरीके से आप किसी को जिसको आप बांट सकते हैं, जिनको जरूरत है, भूखे हैं, मंदिर के आसपास आपको लोग मिल जाएंगे बैठे हुए, जिनको बहुत जरूरत है, आप उनको वो खाना अच्छे से पैक करके जो खाना बच रहा है आप उनको पहुंचा दे तुरंत ही, तो उससे भी एक होता है कि हमने किसी के भूखे का पेट भर दिया है। तो खाने को आप इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए कहना चाहिए, और बच्चे खाने को दूसरों के साझा के साथ साथ एक सुनहरा मौका भी होता है कि हम इसको बनाए रखें, इस चीज को जो हम साझा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को अच्छा भी लगता है कि हम लेके गए और दूसरे की आत्मा को संतुष्टि मिलती है उस भोजन को करने से, और बांट कर खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहाँ पर भी आप इन चीजों को दान कर सकते हैं।
0: जी, कई ऐसे आश्रम हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती है, लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको खुद खाना लेके जाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पास सुविधा नहीं है, क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ उन्हें फोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके बाद आप उन्हें फोन करके और उन्हें बता दें, तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि केटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से

0: ही चला जाएगा.
1: बिल्कुल.
0: तो वो भी आप कर सकते हैं.
1: बिल्कुल सही बात है. और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं, तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं. मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए, और प्लेट में उतना ही ले जितना खा सकते हैं. शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और छोड़ देते हैं. और
0: टेस्ट करने जितना ही लीजिए. हाँ. तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो जी भर के खाइए,
1: वो आप खाइए. और जो हमारा जो

0: कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने, ऐसा मत कीजिए। आप 16 भी रखेंगे तो भी बहुत ज्यादा ही है वैसे तो, लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना है उन्हें तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना है, 16 में भी निकालना है
1: जी। तो इसी तरह हम पानी की भी हमने देखी बॉटल्स होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घूट पिया छोड़ दिया, या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए, तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं
0: जी।
1: तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीजन में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रही है कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियां विवाह में, तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना चाहिए। कह रही है एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं, जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं जो जूठा ना छोड़े, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही ले। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं ना,
1: बिल्कुल मिलते हैं, सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठकर खाना खिलाया जाता था। खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के जमीन में बैठ के खाते थे, उसमें
0: जो परोसा जाता था
1: वो पूछते थे कि और लेंगे, तो इस तरह से खाना थोड़ा बच जाता था।
0: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता, अरे नहीं खाएंगे, खाइए, दो तीन रोटियां दे दी जाती थी जो कि बच जाती थी। पर ठीक है, सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं करते थे। और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिए कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट न खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि दो तीन दिन भूखे रहना चाहिए
1: होता नहीं।
0: हाँ, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई, तो
1: अपने हिसाब से कहा है। हाँ, लोग बड़ा इंतजार करते हैं
0: भूख के कारण, जरूरत से ज्यादा ना खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें। प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें, तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें, मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं।
1: अरे बहुत
0: सामंजस्य से नहीं बैठ रहा है मेरा इस कमेंट के साथ, क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं।
1: नहीं, मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आजकल हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर दो तीन तरह की आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको।
0: देखिए मंजरी जी, इतनी ज्यादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी, उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन, और बहुत सी रॉबिनहुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए, और शादी में डांस करें या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए, और उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन बस गाना सुनते रहिए।

0: तेजी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए. और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के भेज रहे हैं. मंजरी जी
1: बिल्कुल, मेरे एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग. शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है. भोजन का सही सदुपयोग करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है. जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करे और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने

0: का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुनें, सलाद, सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के बजाय गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचें। नेहा बहुत सुंदर सी बात लिखी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए, तो खाना भी खा चुके हैं लेकिन अब टेबल घेरे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
1: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट, लंच सभी सुविधाएं, पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवे। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टाल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
1: रस्में
0: होती उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए,
1: गिनती करते हैं कि कितने कितने रस्में हैं उनकी सबकी साड़ियाँ।
0: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
1: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद शिकायत, हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रुकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मिथेन गैस पैदा करता है।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में लें, खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो भोजन डस्टबिन में जाता है, जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उसे जरूर समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, बल्कि किसी और को भी देखे तो उन्हें भी समझाएं, पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि आपका क्या जा रहा है, पर ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखें। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज्यादा ले लेते थे फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सुन लें गीत।
1: बिल्कुल।

0: अजून एक पाऊल उचलूया.
1: लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की. यह लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहां लघु उद्योग है जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं. इस उद्योग का ज्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहां के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं. मुर्री, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनसे कढ़ाई होती है और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफी प्रसिद्ध है.
2: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएं हैं और ज्यादातर महिलाएं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं. और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा. पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है. और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो है थोड़े असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है क्योंकि एक जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है.
1: बिल्कुल. और नेहा, कई बार हमने खुद भी देखा है वहां पर कि घर घर में कढ़ाइयां होती, महिलाएं, बच्ची, लड़कियां बैठी, सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है कि जब उनके पास घर के काम के बाद समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती हैं. और जहां तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है. चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है. और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टांकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है. अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है. यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा.
2: बिल्कुल. और बात करें अगर चिकन शब्द की तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है. चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना. जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला, संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं. और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आंखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध. सुई धागों से जन्मे टांकों और जालियों का एक विस्तृत, जटिल किंतु मोहक संसार है. तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है. उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते हैं.
1: और लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां तो होते ही हैं, जैसे मुर्री, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला जाली, मुंद्रा जाली, जाजी, सिधौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि. नहीं, बहुत सारी हैं. सबसे मुश्किल और कीमती टांका है नुकीली मुर्री. कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टांके लगाए जाते हैं. जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है. इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी करने के लिए उसको तैयार किया जाता है.
2: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं. तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से उसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है. और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है. अलग अलग तरह के मिलते हैं, आजकल मशीनों वाला काम भी मिल रहा है,
1: लेकिन उसकी चिकनकारी की अलग पहचान होती है.
2: आप पहचान सकते हैं,
1: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है, जैसे जॉर्जेट, शिफॉन की साड़ियां भी हैं और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी इन सब में और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफा कवर इन सब पर भी ये वर्क मिलता है. तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपका इन सब से सजा हो. कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी चिकन के बनते हैं. तो बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी कढ़ाई है, तो हमारी सखियों में किसी ना किसी को तो ये वर्क आता भी होगा.
2: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है.

0: तो नेहा, थोड़ी देर पहले तुम कुछ गुस्सा हो रही थी।
1: नहीं, गुस्सा नहीं होते, हम तो कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि खाना अच्छे ज्यादा मत खाओ, कोई कह रहा है कि साड़ियां क्यों लेती हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और
0: यानी कि
1: गुस्सा
0: साड़ी,
1: होने का
0: हाँ
1: एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया ही नहीं है शादी में हमें,
0: सही
1: और सब
0: बात है,
1: बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या
0: क्या
1: खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने
0: खाया
1: नए कपड़े लिए, ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा
0: हाँ
1: होना तो बनता है।
0: बिल्कुल बनता है। तो चलो
1: हाँ
0: ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना के खा
1: हाँ
0: लेना,
1: कुछ तो
0: तो
1: गुस्सा कम हो।
0: कुछ तो कम होगा तुम्हारा,
1: जी।
0: ठंडक मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे
1: हाँ
0: पीसेस में कर लीजिए। और 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं, खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी।
1: नहीं, हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए
0: अच्छा
1: हम खाएंगे आम की स्मूदी,
0: बनाओ फिर हम
1: जिसकी
0: भी खिलाओ।
1: रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे और
0: खुद ही
1: खाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही
0: खाएंगे।
1: तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे।
0: चलो ठीक
1: तो एक आम पका हुआ लेना है इसके लिए काटकर, 1 कप ठंडा दूध, 2 चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और उसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा
0: अच्छा,
1: लीजिए।
0: यानी
1: जी
0: तुम आज अकेले खाने वाली, तो
1: हाँ
0: ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी, तुम अपने लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही।
1: हाँ
0: इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, 1 कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, आधा चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसकी

0: विधि है कि दही को अच्छे से फेंटे, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं और नेहा को देख दिखा दिखा के
1: तो हम तो
0: खाएं।
1: देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो। 2 कप दूध, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, 3-4 चम्मच चीनी, और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए। जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाना है, क्योंकि नहीं तो डलियां पड़ जाती हैं। तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए और ठंडा होने पर इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए। स्वाद दोगुना हो जाएगा।

0: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
1: ये सामंजस्य बना के बन रहा है. और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना. ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है. और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा, कि पहले तो खुद के साथ. सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और जरूरत को समझना जरूरी है. अपनी सीमाएं पहचाने, खुद को समय दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और परिवार के साथ भी आप सामंजस्य आप

0: परिवार के साथ बात आती है तो परिवार में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं छोटे बड़े, तो हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें जो हो जाती है, और छोटों को भी प्यार सम्मान देना है, खुलकर बातचीत करनी है रिश्तों में, तभी सामंजस्य अच्छा बना
1: बन
0: रहता
1: जाएगा
0: है।
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, अनुकूलता या समन्वय, जहां विभिन्न तत्व मिलजुल कर एक सुसंगत रूप बनाते हैं। ये मानसिक या व्यवहारिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें पर्यायवाची शब्दों में मेल, तालमेल, संतुलन, अनुकूलता, समन्वय, समझौता, सद्भाव और सामंजस्यता शामिल हैं। तो इन्होंने सारे शब्दों का भी एक सामंजस्य बना दिया हमारे
0: बहुत
1: लिए।
0: बहुत अच्छी सी बात
1: जी
0: है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, एक शब्द हमारे विचार आपके इस बात का प्रतीक है कि भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमारे सच्चे विचारों और इरादों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और शब्दों में ईमानदार, साफ सुथरा और प्रामाणिक होना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्यों को जीते हैं और उनके अनुरूप ही बात करते हैं, तब हमारे जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है।
1: और एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य शब्द जी के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सामंजस्य से अगर जीवन में नहीं हो तो आप कोई काम बिना तनाव के, अगर सामंजस्य हो तो आप कोई भी काम बिना तनाव के कर सकते हैं, बिना ज्यादा दिक्कत के वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जीवन में जो बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, अगर वहां भी अगर आपके पास समान जैसे समान रहते हैं, अगर आप समान रहते हैं, सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी टल जाएंगी और अच्छे दिन आपके जीवन में वापस आ जाएंगे।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि जब हम जोश भरी आवाज में सुनते हैं वैभव, सूर्यवंशी और यशस्वी वाली बातें, तो ये आपसी सामंजस्य दिखाते हैं। कुल 23 रन जोड़ लिए हैं तो कितना अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है। दो मन उनके विचार और कृतियों की साधने वाला समान दुआ यानी सामंजस्य, जिसमें आपसी तालमेल, अनुकूलता, समन्वय, संतुलन और एक रूपता होती है। हमारा दैनिक जीवन खेल, संगीत और कला क्षेत्र के साथ राजकीय और सामाजिक व्यवहार में भी सामंजस्य होता है, जिससे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संघ भावना बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान बन जाती है।
1: और हमारी एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य जीवन को सुंदर और सरल बनाने की कला है। जहां विचारों, व्यवहार और संबंधों में तालमेल होता है, वहां शांति और प्रेम बना रहता है। परिवार, समाज और मित्र, हर रिश्ते की मजबूती का आधार सामंजस्य ही है। सामंजस्य से मतभेद भी सहजता से सुलझ जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। और असली खुशियां आती हैं जब सामंजस्य बना रहे बातों और गीतों के बीच।
0: तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो हमारे साथी लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहां सामंजस्य होता है वहां रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाएं।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ लेना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे, तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते हैं।
0: आप अपना ख्याल रखिए और फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है, जनरेशन गैप की समस्या। परंतु घर का मुखिया अगर उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी भी में सामंजस्य बैठाकर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता है जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों का ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
2: मत बेकरार करना

0: अब तो हम भी कुछ नहीं जानते क्योंकि समय वमय रह नहीं गया है।
1: तो अब हमें चलना होगा, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे उनके रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
2: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
2: जी, मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं

0: भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस. तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई क्योंकि मैं वहां बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी. 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहां रहना होता था. और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में. तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था. हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए. तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीजें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई. जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ. मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हाँ मैंने बहुत काम किया.
1: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया. और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपने सबसे पहले कौन सा काम किया? आप
0: पहले जब मैं अप्रूव आर्टिस्ट हुई थी तो रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट थी.
1: अच्छा.
0: वहाँ एक रेडियो प्ले हुआ था, उसका नाम था किरचें. तो वो रेडियो आर्टिस्ट के साथ किया था मैंने. और बाद में यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी 2-3 रेडियो सीरीज की थी
1: जी.
0: आउटसाइडर प्रोड्यूसर और वो लोग होते थे और रेडियो पे वो यहाँ ब्रॉडकास्ट होता था. तो वो मैंने एक निर्मला किया था, जिसमें मैंने निर्मला प्ले किया था. कोई पंजाब बैकग्राउंड पे भी था, वो भी किया था. चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड्स 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफी महत्वपूर्ण था. और वो सिर्फ रेडियो के लिए था. वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है.
1: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? कैसे नाटकों की दुनिया में आए? कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
0: जी, वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में. क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16-17. तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं. उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई.
1: अच्छा,
0: छोड़ के
1: जी.
0: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे. तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी इच्छा है तो कर ले. उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या? मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है, पर कर लूंगी अगर करवाना है तो. बोले ठीक है, आ जाओ देखो. उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में. उन्होंने कहा जाओ. उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक नया जीवन
1: मिल गया.
0: तो वो मेरी शुरुआत थी. पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन.
1: अच्छा.
0: हाँ
1: जी.
0: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे. वो जो उसमें डायरेक्टर थे और मैं उनको मामा जी कहती थी. आप सोचिए, आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे, पर वो मेरे हीरो थे.
1: तो अब तक आपने कितने नाटक कर लिए होंगे
0: स्टेज पे? तो मैंने मेरे ख्याल से 25-30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8-10 साल. उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए.
1: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था है वदन, उसमें आपने काम किया और जाने माने नाटककार बीबी कारंत साहब के निर्देशन में.
0: जी,
1: एक
0: जी.
1: बहुत बड़ी बात है
0: जी.
1: तो कैसे मिला आपको ये नाटक और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
0: जी, इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव ये नाटक था है वदन. क्योंकि मैं भारत भवन में गई रंगमंडल में, तो वहां पे ये नया नाटक ओपन हुआ था. कास्टिंग की जा रही थी. उस कैरेक्टर में कारण जी को मैं ही सबसे ज्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की. नई लड़की थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारण जी के लिए भी.
1: बिल्कुल.
0: तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया. उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी जिंदगी के लिए भी एक चुनौती था. इससे पहले उन्होंने NSD में ये किया था और कारण जी को जाना जाता था इस नाटक से ही. और वो कैरेक्टर उसमें जो है बदन में जो मेन कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है. पद्मिनी।

0: कंपनी का, तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था और उसके लिए जो उनको चाहिए था उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहां से लेके एक एक चीज पे काम किया। और वो जो उन्होंने काम किया वो मेरे जीवन भर की कमाई है समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक अब तक मेरे काम आ रही है
1: जी
0: जो जो बताया उससे, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहाँ भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में, उसमें बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
1: तो
0: तो
1: इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
0: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों के दोनों, दोनों चले गए, दोनों चले गए। मरने से पहले मुझे तो याद कर लेते, मेरा क्या होगा? माँ दुर्गे, दुर्गे, अब तू ही बता मेरा कौन है? कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया, तो ठीक है, इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूं। इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
1: बिल्कुल
0: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी भोली लग रही है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उसकी चालाकी
1: उसके
0: देखिए,
1: अंदर क्या
0: यहाँ
1: चल रहा है। हाँ
0: वो यहाँ देखिए, अब ये दूसरे डायलॉग में आपको
1: जी
0: दिखाई
1: जी
0: देगा।
1: बिल्कुल
0: चलो चलो देवदत्त, कपिल, ये क्या है? ओफो, हमें क्यों सता रहे हो? जाओ यहां से। देवदत्त, मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो अब देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। हाँ, सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है, याद रखो। चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। फिर मिलेंगे कपिल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन ले।
0: जी जरूर, आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
1: अच्छा जी
0: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं, तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ, उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी जी
0: और जिस तरह से वो वेस्टर्न, इंडियन, सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और सब में ढल जाती हैं, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती
1: बिल्कुल
0: हैं
1: बिल्कुल
0: वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे आ रे।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थी NSDN आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे. तो उनसे हमने बहुत सीखा. एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको.
0: बिल्कुल.
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल मैंने किया था. जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था. हमारा एक ग्रुप था कुटुंब.
0: अच्छा.
1: जिसमें अन्नू कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि के मुंह वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय.
0: बिल्कुल.
1: उनके साथ में हमने रोशोमन प्ले किया था. आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो. तो रोशोमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका. और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था.
0: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती है.
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
1: जी,
0: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
1: जी,
0: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
1: जी, जी.
0: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है, संवाद याद रखना. हाँ. बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है. खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं.
1: ये तो साधना है. मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग. ऐसा नहीं है. ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना. लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
0: बहुत मुश्किल,
1: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है. ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है. शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है. आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार. लंबे समय तक आवाज की, मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती है चीजें. उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है.
0: बिल्कुल.
1: और इस सबको कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही. और निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा.
0: बहुत मुश्किल होता है. कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है कलाकार को.
1: कई बार नहीं, बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है. अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है, तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही.
0: बिल्कुल.
1: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो

0: मैं आपको बता रहे थे कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है। दो तीन चीजों पे खाई, एक तो ये कि मैं बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है ना वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को। मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत था इसलिए मैं कर रही थी। कारण जी ने कहा है भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ, आकी तो मेरी नौकरी थी तो मुझे करना ही था। तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूं, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था। तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे। शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया बुरा किया वो सब बताया जाता था। तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया, आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूं। तो वो मुझे बोले क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है? सच बताऊं मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूं। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला फिर क्यों लिया? तो मैंने कहा मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे। बोलते तुम्हारी आंखों की वजह से, तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो। मैं थक गया हूं तुमसे, आज आठवां नौवां शो है, तुम कर क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी, क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ, यहां प्यार में डूबी हो वहां नहीं डूबी हो, वहां चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं? जो इतना डांटा गया। उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज को पिकअप किया और तब मैंने ये आंखें घुमाना जो कि मेरा बुनियाद में काम आया।
1: बुनियाद धारावाहिक में काम आया।
0: हाँ,
1: जी जी जी
0: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जब कैरेक्टर किया ना अपना, जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पे वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था, मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार, ये चोटी घुमाई थी, तो बोलने लगे वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
1: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहां काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता
0: काम
1: ही है,
0: आता जो वो सीखता है,
1: सीखता है।
0: महान डायरेक्टरों
1: हाँ।
0: से उनके साथ काम करना इसीलिए एक
1: बड़ी बात।
0: अचीवमेंट है।
1: मुझे बताइए
0: बिल्कुल
1: प्रभा जी, कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है
0: जी,
1: ना,
0: जी,
1: वैसे
0: जी,
1: के वैसे हो जाए, समाहित हो जाए।
0: जी
1: तो आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुसी रह गई और निकल नहीं पाई?
0: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ, तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे ही वो खत्म हुआ मैं
1: उसे
0: तुरंत
1: बाहर।
0: प्रभा हो जाती हूँ।
1: जी जी जी
0: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीयरेंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने
1: नहीं
0: नहीं
1: होने
0: दिया,
1: दिया।
0: मैं प्रभा हमेशा बनी रही।
1: बिल्कुल।
0: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं, मतलब मुझे कहते थे ये ऐसी एक्ट्रेस है स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था,
1: जी।
0: संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था, मैं वहां गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी और उसमें वो जो लेडी होती है उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है, मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये सब बताते हुए वो टूट जाती है। तो ये था, हे भगवान कहीं कोई रोशनी एक किरण तक नहीं।

0: निकालोगे, क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम? इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूं टूट के कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे। वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे? Are you okay? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं यू करती, जैसे आपने अभी देखा, मैंने अभी आपके सामने किया।
1: यही एक कलाकार की पहचान है कि वो कब कैरेक्टर में घुसता है और कब निकल आता है। तो चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: एक आशा जी का गीत सुन ले। आशा जी के गीत भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक रेयर सॉन्ग है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया।

देखिए पृथ्वी थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है और हर रंगकर्मी का सपना होता है कि पृथ्वी थिएटर में काम किया जाए। तो नाटक बगुला भगत में आपने राधा का किरदार किया था, विजय वर्मा शायद डायरेक्टर थे। तो ये सभी एनएसडी पास आउट डायरेक्टर हैं, इनके काम करने का तरीका क्या एक आम डायरेक्टर के काम

0: करने के तरीके से कुछ अलग होता है, आपने क्या महसूस किया?
1: हाँ, एनएसजी के लोग बहुत बारीकी में चीजों को समझते हैं, पकड़ते हैं, चूंकि उनको तो वो तो पूरा एक ग्रेजुएशन है ना एनएसजी में, वहाँ पढ़ना तो पूरा एक लेते हैं, तो वो कारंजी वाली चीजें एनएसजी के सभी लोगों में है। तो मैंने सौभाग्य से उनके साथ काम किया है, ये सारी चीजें मैंने इन्हीं लोगों से सीखी। बगला भगत वो कॉमेडी नाटक था, मैंने जो कुछ भी सीखा जहां जहां से थोड़ा थोड़ा सब जगह से सीखा, मेन तो करंजी से ही सीखा सब कुछ, लेकिन फिर भी हर एक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा लास्ट प्ले जयरूप जीवन जी के साथ ही था, ढाई आखर प्रेम का। इसमें क्या हुआ था, तब तक मैं आवाज की दुनिया की काफी बड़ी शख्सियत बन चुकी थी, तो मैं हीरोइंस करती थी ज्यादातर, उस समय सिर्फ फिल्में चला करती थी, उस समय सीरियल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंट्रोड्यूस तो हुए थे लेकिन बहुत कम, डीडी पे ही होते थे और वो हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी डबिंग नहीं होती थी उनकी, तो मैं फिल्मों में ही कर रही थी। इनका प्ले था ढाई आखर प्रेम का, उसमें मेन रोल में कर रही थी। अब होता ये था कि हमारी जो रिहर्सल्स थी वो होती थी 6 to 8, क्योंकि वो एक स्कूल में हुआ करती थी और 8 बजे स्कूल की तरफ से ये था कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, उसके बाद अलाउड नहीं था। और मैं जो डबिंग कर रही होती थी उन दिनों, या शूटिंग भी होती थी, तो उनकी शिफ्ट होती थी 9 to 6, जो कि काम खत्म होते होते तक 6:30 हो जाता था वहां से निकलते निकलते तक, और पेमेंट वगैरह लेते थे, ये सब बातें होती थी, तो तब तक वो 7 बज जाते थे उन्हीं जगहों पे, और वहां से आते आते 7:30-8:15। तो अब वो रिहर्सल लगातार हो रही है और मैं लगातार 7:30-8:15 यही मेरा टाइम चल रहा है, तो रिहर्सल नहीं मिल पा रही है। तो वो जयरूप जी मुझे बोले, अब एक बात और बताऊं आपको, जयरूप जी के साथ मैंने यश चोपड़ा की सीरियल डॉक्टर साहब में एक्टिंग भी की है
0: जी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, वो मेरे अपोजिट थे उसमें, हम लोग थे
0: जी।
1: तो जयरूप जी मुझसे बोले कि प्रभा जी कैसे क्या करें कि पूरा रिहर्सल का टाइम मिल जाए। मैंने कहा देखिए जयरूप जी, मैं कर सकूंगी तो जरूर करती हूँ, करूंगी, अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना गिल्ट फील करती थी डेली यही होना, मैं आऊं और बस आधा पौने घंटा हो, एक आध सीन हो पाए, उसके बाद बाकी आर्टिस्टों का होता रहे और जयरूप अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाए कि आप अब आई हैं। अब डेली ये होते होते 1.5 महीने मैं इस प्रोसेस से गुजरी कि मैं गहरे गिल्ट में चली गई कि क्या हो रहा है मेरी वजह से। वो बोले कि ऐसे कैसे होगा, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं 4 दिन में कर लेती हूँ। बोले आप तो कर लेंगी लेकिन आपके को एक्टर कर लेंगे। इस बीच में इतना मेरे अंदर गिल्ट डेवलप हुआ 1.5 महीने में, मुझे लगे मैं कर क्या रही हूँ। अब क्या हुआ, 4-5 दिन पहले वो जयरूप जीवन बोले कि प्रभा जी अगर आप पूरा एक दिन दे दें तो हम रिहर्सल रख लें, हॉल ले लें, कॉस्ट्यूम रिहर्सल रख लेते हैं, पूरा रन थ्रू करेंगे। मैंने कहा जी जी जी, शो के एक दिन पहले। और क्या होता था उसमें, जो मेरा हीरो था मेरे अपोजिट, वो था सुशील पाराशर, काफी एड वगैरह में आते रहते हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे और कॉमेडी में तो उनका कमाल था। तो होता ये था कि वो, अब चूंकि रिहर्सल्स हुई नहीं थी तो एक दूसरे से मतलब वो नहीं हुए थे हम लोग मोमेंट में इसमें उसमें, वो तो अच्छे एक्टर थे तो अपने आप कर ले जाते थे। तो वो कॉमेडी में ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मेरी हंसी छूट जाती थी। जब मैं हंसती तो जयरूप जी ने बोला एक दिन मुझे कि प्रभा जी आप हंसिए मत, अगर शो में निकल गया तो। मैं कहा ऐसे कैसे निकल जाएगा, इतने सालों किया है। बोले देख लीजिए हंसिए मत, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन रिहर्सल नहीं मिली थी तो मुझे उस एक्टर के बारे में, मैं मतलब हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हुए थे एक दूसरे से, जैसे रिस्पॉन्ड करता है एक्टर एक दूसरे को, वो नहीं हुआ था। तो उस दिन भी जिस दिन फाइनल रिहर्सल थी, कॉस्ट्यूम रिहर्सल थी, उस दिन मैं मीनाक्षी शेषाद्री का एक फिल्म कर रही थी, इसमें मीनाक्षी शेषाद्री की डबिंग कर रही थी। फिल्म थी जुर्म, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे, वो मैं डब कर रही थी। और एक दिन पहले जब मैंने काम किया तो कुछ किसी कारण से रील नहीं आ पाई, कुछ हो गया, शायद 4-5 रील रह गई उसकी। उन्होंने कहा अब ये हम कल करेंगे, और रिलीज सर पे था, रुक नहीं सकते थे। और उन्होंने कहा कल, कल तो पूरे दिन मेरे लिए हॉल लिया गया है।

0: मन का मैं कल नहीं आ सकूंगी। वो बोले सोच लीजिए, 9 रील हो चुकी हैं आपकी आवाज में। तो मैंने कहा लेकिन मैं कल कैसे आ सकूंगी, क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ। बोले एक काम करते हैं, 2 बजे से रख लेते हैं, सुबह आप रिहर्सल कर लीजिएगा, 2 बजे से रख लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे टाल नहीं सकते। और मैं उस जमाने में उस फिल्म में 25,000 रुपये ले रही थी।
1: उस समय
0: तो 25,000 रुपये उस वक्त, जब मतलब लोगों की सैलरी 2,000 होती थी महीने में। और वो उन्होंने कहा, महेश भट्ट के एसोसिएट डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने मुझे कहा, वो उस दिन समझा रहे थे वो मुझे बैठ के, बोले आप एक्टिंग क्यों करती हैं, आप थिएटर क्यों कर रही हैं, आप तो टॉप डायरेक्टर के साथ कर चुकी, आपको सारे एक्सपीरियंस मिल गए, आप क्यों कर रही हैं थिएटर। मैंने बोला मुझे खुशी होती है। बोले और ये डबिंग इसमें क्या होता है। मैंने कहा ये भी खुशी होती है। तो बोले कौन सी बड़ी खुशी है, ये या वो। मैंने कहा खुशी तो एक बराबर है, लेकिन बोले क्या नहीं करके आप कंफर्टेबल होंगी। मैंने कहा थिएटर, क्योंकि इससे मेरा खर्चा चलता है।
1: हाँ
0: तो बोले तो आप सोच लीजिए आप किस चीज़ के लिए किसको छोड़ रही हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले कल आप 2 बजे आ सकती हैं तो आ जाइए, वरना टाटा बाय बाय। मैंने कहा ओके। अब हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जयरूप जीवन को बोलूं कि मैं कल भी नहीं आऊंगी। मैंने उनको बोला कि कल हम 9 बजे से रखते हैं और हम कम से कम 4 रन थ्रू हम कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। उन्होंने मेरे लिए थिएटर लिया। अब हुआ ये कि किसी को नहीं पता था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कह दूं कि मैं 2 बजे जाऊंगी। मैंने बोला सुबह 9 बजे सब लोग आ जाए और 9 बजे से रिहर्सल करते हैं। ठीक है। मैं 9 बजे पहुंच गई, लेकिन बाकी कोई नहीं पहुंचा। जयरूप जीवन भी 10 बजे पहुंचे, 10 साढ़े 10। तो उनको लगा 9 बोल रही हैं, कहाँ 9 बजे तक आ पाएंगी। और मैं इस वजह से ज्यादा वो थी कॉन्शियस कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। हम वहां पहुंचे, देखा कोई नहीं आया आर्टिस्ट। अब जयरूप जीवन बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, आर्टिस्ट आने शुरू हुए, 10 बजे से शुरू हुए, क्योंकि ये इमेच्योर थिएटर था, पेमेंट तो मिलता नहीं था किसी को। करते करते वो शुरू हुआ 11 साढ़े 11 बजे, 1 रन थ्रू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 2 बज गए। अब 2 बज गए, हम वहां थिएटर ले चुके हैं, वो लोग पे कर रहे हैं एक एक
1: जी
0: मिनट का,
1: जी
0: और वहां मेरा वेट हो रहा है। 1:45 बजे से मैं कॉन्शियस होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही, डायलॉग भूल रही। 2 बज गए। अब मैं सोचू बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि 1 रन थ्रू हुआ बार, बस जब तक मैं कुछ बोलूं कुछ करूं। जयरूप जीवन मेरे पास आए, बोलने लगे प्रभा जी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। 2:15 बजे बोलते क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरी डबिंग है। बोले आज भी। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ कल काम रह गया था उनका, तो मुझे आज भी बुलाना है। मैंने कहा आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगी। 25,000 रुपए हैं, महेश भट्ट का काम है,
1: सही बात,
0: इतने बड़े उस पर मेरा नाम हो जाएगा खराब, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगी और आप कहें तो करूं। सर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ये काम मत करो, कर लो। मैंने कहा और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं बहुत गिल्ट में जी रही हूँ 2 महीने से, अब मैं थिएटर नहीं करूंगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जब शो हुआ तो शो में वही हुआ कि मेरी हंसी छूट गई,
1: जो नहीं होनी थी,
0: जो नहीं
1: जिसका
0: होना
1: उन्हें डर था,
0: जिसका उन्हें डर था। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था एक्टर सुशील। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करेक्शन करने की कोशिश कर, वो जितना संभालते मैं उतना हंसती, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि मैं नाराज हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ और मायके जा रही हूँ तो बोलते हैं झगड़ा जा रही मायके जा रही हूँ, बड़ी तुम्हारी तमीज है मायके जाने की, ऐसा कुछ वो उनका था। मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूटी तो वो बोलते हैं अरे हंस रही है, देखो वो ऑडियंस को बोल रहे देखो कैसी पागल लड़की है, मैं इस पे नाराज हो रहा हूँ और ये हंस रही है। और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के बोले कि मेरी और ज्यादा हंसी, इतनी हंसी छूटी कि मेरे साड़ी का पल्लू था, मैंने पूरा पल्लू अपना मुंह में घुसार लिया, फिर भी मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। उसमें VM व्यास भी थे, वो मेरे ससुर बने हुए थे और वो मेरा पति बना था। उस दिन जो स्टेज पे मेरी हालत हुई ना, वो मैंने कहा बाप रे मैं अब इस लायक नहीं हूं कि मैं थिएटर कर सकूं, क्योंकि रिहर्सल्स मैं दे नहीं सकती हूँ पूरी, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज है ना कि आप हर बार एक पूरी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। एक बार हरिवदन में ये हुआ था कि हम लोग शो कर रहे थे और उसमें

0: देवदत्त को जो मेन रोल था, आलोक चटर्जी, कितना बड़ा नाम है वो, आलोक चटर्जी ने किया
1: जी
0: था वो।
1: जी
0: आलोक चटर्जी को लूज मोशन लग गए।
1: अच्छा
0: हाँ अब बताइए क्या करें। अब वो बेचारा एक हाथ से पेट पकड़े, एक हाथ से पूरा ये रिहर्सल, मुझे भी पता नहीं चला, बस मुझे लगे वो गायब हो रहा है, थोड़ी देर में एंट्री हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सबने बताया कि उसको डिसेंट्री हो गई थी, उल्टी हो रही थी,
1: बताइए
0: लूज मोशन हो रहे थे,
1: जी।
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: वो आ रहा था,
1: बिल्कुल,
0: उसमें कर रहा था।
1: उसमें भी अगर कलाकार संभालता है तो उसकी महानता है
0: आप
1: देखने
0: सोचिए,
1: से कि वो
0: सोचिए कितना
1: हर
0: डिफिकल्ट।
1: परिस्थिति में नाटक को एंड करना चाहता है कि नाटक एंड हो जाए
0: द
1: किसी
0: शो
1: तरह से।
0: मस्ट गो
1: गो ऑन,
0: ऑन।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, हमारा भी शो चल रहा है। और बताइए, कौन से गीत आपको सुनवाएं अब?
0: गीत आप सुना दीजिए, आपसे मैंने मेरी जान मोहब्बत की है।
1: क्या बात है।

0: बाबा जी, सीरियल की दुनिया अब चलते हैं हम, जहाँ आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और एक मुकाम बनाया है अपना, तो थिएटर की दुनिया से निकलकर जब आप टीवी की दुनिया में आई तो वो शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वो जमाना था दूरदर्शन का?
1: जी हाँ जी।
0: तो बुनियाद सीरियल में आपने जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी के साथ काम किया है, उनके निर्देशन में, और बहुत ही क्लासिक विभाजन गाथा थी ये बुनियाद जो है।
1: जी, जी।
0: आपको मतलब किस तरह से चयनित किया गया, क्या ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के जरिए चुना गया, या
1: मैं आपको बताऊं, ये जो ऑडिशन वाला चक्कर है ना, ये बाद में शुरू हुआ है।
0: अच्छा, पहले नहीं होता था?
1: तब नहीं होता था, तब तो डायरेक्टर सीधे देख के और वो अपना जजमेंट होता था उनका। इसके लिए हुआ ये था कि मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसका नाम था ढहती बुनियादें। तो ढहती बुनियादें मैंने आशा शर्मा जो बुनियाद

0: में चाय जी का रोल कर रही थी, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरी फिल्म आएगी, आप देखिएगा। उन्होंने देखा, उनको लगा लड़की तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो वहां एक कैरेक्टर निकला बुनियाद में, तो उन्होंने रमेश जी को बोला कि एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है, थिएटर की है, नई लड़की है, आप देख लीजिए। तो आशा जी ने मुझे वहां रिकमेंड किया, रमेश जी ने मुझे बुला लिया जहाँ शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, बैकग्राउंड पूछा, थिएटर बैकग्राउंड था मेरा पूरा, फिर वो फिल्म थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने बस देखा और मुझे वो स्क्रिप्ट वहीं थी ही, उन्होंने कहा ये जरा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया, बस उन्होंने मुझे ले लिया।
1: जी, तो आपका इसमें रोल क्या था, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
0: हाँ जी, मेरा रोल था फूलमती, एक नेगेटिव कैरेक्टर था।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: और अगर हम बात करते हैं यश चोपड़ा साहब, उनका एक धारावाहिक आया था डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र
0: जी
1: अभी
0: जी
1: आप कर भी
0: जी
1: रही
0: जी
1: थी,
0: जी जी जी
1: तो इसके निर्देशक परीक्षित साहनी थे।
0: जी हाँ
1: तो प्रभा जी, दूरदर्शन के लिए एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक आया था अधिकार,
0: हाँ जी
1: तो और जानू
0: हाँ,
1: बरुआ साहब इसमें
0: डायरेक्टर थे।
1: डायरेक्टर थे, तो इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको?
0: ये तो बस ऐसे सौभाग्य समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो गई थी वो उनसे प्रोड्यूसर से मिलने, वो मंजू सिंह थी ना,
1: मंजू सिंह थी।
0: तो मंजू सिंह से जी से मिली। मुझे नहीं पता था कि इस एपिसोड को वो डायरेक्ट करने वाले हैं बरुआ जी, ये तो मुझे वहां जाके पता चला सेट पे कि वो जानू बरुआ जी। मैं
1: तो
0: तो जानू बरुआ जी को जानती भी नहीं थी तब तक, उतना वो नहीं था। तो उनके साथ मैंने एक चीज देखी, ये मैंने उनसे सीखा कि हम लोगों का उसमें जो रोल था वो था एक मजदूरों की लीडर का। तो उसमें क्या है, फिश का, कोल्ड स्टोरेज का, कि वहां पे वो फिश में वहां काम करती हैं वो कोल्ड स्टोरेज में लेडीज, तो उनका जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ, वो होता है। तो मैं भी वही थी, और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अब उसमें तो मछलियां ही मछलियां, क्योंकि वही था मेरी हालत खराब, तो वो थी उसको साफ करने वाली, वो मजदूर हैं, तो वो टोकरे भर भर के और चारों तरफ सफेद सफेद वो मछलियां ही मछलियां। अब मुझे आ रही थी घिन बहुत भयंकर, क्योंकि मैं तो कभी छुआ ही नहीं मैंने। अब मुझे उन्होंने कहा चलो करना है तो करना है। अब जब मैंने किया तो मैं ऐसे घिना घिना के छील रही उसको, ये तो मतलब मैं इस तरह से करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड लेडी, बहुत धीरे धीरे नाखून से उठाए, उंगलियों से उठाए, धीमे से रखे, लेकिन आप मजदूर हैं, आपका डेली का काम है
1: काम
0: वो,
1: है।
0: तो आपका तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि
1: हाँ
0: आप इतनी नजाकत से उठाएंगी, इतनी
1: हाँ
0: नजाकत से ये रखेंगी।
1: रखेंगे, सही है।
0: वो जब मैंने ऐसे किया तो जानू बरुआ मुझसे बोले कि आपने कभी मछली नहीं छुई है क्या? मैंने कहा नहीं छुई। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बोले यहाँ मछली साफ करने वाली मजदूर है ये, उसका जीवन मछलियों में है, वो दिखना चाहिए आपसे। मैं कहा आप क्या करूं, मैंने कहा वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बोले इतनी टोकरी रखी थी, इतनी मछलियां आपको साफ करनी है, और उन्होंने रियल मजदूर लेके आए, वहां थे रियल मजदूर जो शूटिंग पे नहीं थे, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए इनसे सीखिए।
1: वाह।
0: मैंने उनसे सीखा, जब तक उस परफेक्शन से मैंने मछली छीली नहीं तब तक शूटिंग रुकी रही,
1: बहुत बड़ी बात।
0: और मैं नाक मतलब मुझे ऐसे लगे मैं मर जाऊंगी उस बदबू से। तो मैंने कहा मैं नाक चढ़ रही, बोलने लगे आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीवन है वो, आप उन्हीं में रहती हैं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा, क्या आप फैमिलियर हैं
1: जी
0: इनसे?
1: बिल्कुल
0: ये थे
1: बिल्कुल
0: जानू
1: बिल्कुल
0: बरुआ।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कहा आप ऐसा लगना चाहिए, आपके जीवन है। क्या करती फिर मैं टोकरी ले, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम ये करोगे उतना होगा। तो मैं टोकरी लेकर खूब अच्छे से, वो खुद छिल छिल के दिखा रहे कि इसको ऐसे छिलो, उसकी मुंडी ऐसे तोड़ो, इसमें से ऐसे धागा निकालो,
1: क्या
0: इतने
1: बात,
0: फास्ट चलना
1: क्या
0: चाहिए
1: बात
0: हाथ।
1: है, क्या बात।
0: तो ये
1: मतलब
0: मैंने
1: वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए, कहने
0: प्रैक्टिस
1: का
0: दिखनी
1: मतलब।
0: चाहिए, मतलब आप रियल लगना चाहिए।
1: हाँ
0: यही बात है
1: हाँ
0: मंदाकिनी जी, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मैं चूंकि एपिसोडिक ज्यादा किए मैंने, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिल पाया। आप सोचिए कि एक तरफ रमेश सिप्पी, दूसरी तरफ गुलजार, तीसरी तरफ श्याम बेनेगल, जानू बरुआ,
1: बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर
0: थिएटर में भी और फिल्म्स
1: जी,
0: में
1: टॉप
0: भी
1: ग्रेड के कलाकार,
0: टॉप ग्रेड के,
1: बिल्कुल।
0: और आवाज में भी, डबिंग में भी फिर यही लोग थे।
1: तो चलिए आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं।
0: हाँ।

0: डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1988 में धारावाहिक आया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पर था, भारत एक खोज। तो इसके निर्देशक भी महान थे, श्याम बेनेगल साहब।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और इस धारावाहिक में आपका जो किरदार था वो प्रेमवदा का था।
1: प्रेमवदा,
0: किस तरह से आपने प्रेमवदा का ये कैरेक्टर जिया?
1: बस वही जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जीना होता है उसको समझ के, उसके जीवन को फील करके। तो उनके साथ वो भी अगेन उतनी ही बारीकी से काम करने वाले थे कि वो मेन कैरेक्टर्स पे ही नहीं बैकग्राउंड पे भी वो उतना ही काम करते हैं। श्याम जी,
0: जी जी,
1: पर्दे को रियलिटी में कैसे आप जिए, ये वो श्याम बाबू
0: सिखाते थे। आपने बहुत सारे धारावाहिक में प्रभा जी काम किया है, अगर हम यहाँ जिक्र करने बैठे तो शायद जो समय है वो पूरा हो जाएगा। हाँ। ब्योमकेश बख्शी थे, उसमें आपने काम किया है। कई टेलीफिल्म्स में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने शिव महापुराण की बात करें या आप बीती, कमांडर, सांच को आज, ऐसे बहुत सारे धारावाहिकों में आपने काम किया है, तारा है या एयर होस्टेस है। तो उस समय जो कहानी में गहराई होती थी, एक सामाजिक संदेश था, आज थोड़ा सा कम होता है, एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं।
1: हाँ, वो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि आजकल कमर्शियल ही रह गया है प्रोग्राम बनाना। आजकल मतलब वो गहराई को छूना उनका उद्देश्य भी नहीं रह गया है। तो पहले जो होता था वो लोगों के दिलों में उतरना होता था।
0: जी,
1: अभी क्या है कि खींचना है उनको ज्यादा से ज्यादा।
0: आपने फिल्म अकेला में
1: और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला, उसमें वो रोल था नर्स का जिसको वो फ्लर्ट करते हैं।

0: वो फिल्म की लंबाई बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वो रोल पूरा काट दिया गया मेरा।
1: तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर को आपने अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि स्मिता पाटिल हैं, मीनाक्षी शेषाद्री हैं, किमी काटकर हैं, रमैया, मुनमुन सेन और बहुत सारी अभिनेत्रियों के अलावा आपने जैसे जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपकी अपनी आवाज है।
0: 007 जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई नाम था उस फिल्म का,
1: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज
0: जी मेरी आवाज है
1: जी।
0: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म्स भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म्स में अपनी आवाज दी है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी,
0: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है? एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
1: तो स्मिता पाटिल के लिए आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
0: स्मिता जी की डेथ हो गई थी तो कुछ फिल्में थी जो तैयार थी और स्मिता जी नहीं रही तो उनकी आवाज को मैच करती हुई कोई आवाज चाहिए थी, तो ये मेरी थी पेट पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को। मैं देखती हूँ सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज है या स्मिता पाटिल की है।
1: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
0: देखिए मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज की हर विधा।
1: अच्छा,
0: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, पीबीसी है, इसकी वॉइस ओवर है, विज्ञापन है, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से कम।
1: जी
0: तो सिर्फ आवाज कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर रही हूँ।
1: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
0: अच्छा, एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, बनाते हैं, सब आर्टिफिशियल आवाजें बनानी होती, जैसे कि क्या कहाँ से आ रहा है तो कैसे छोड़ दूंगा।
1: हाँ, बात को
0: ऐसे आवाज।
1: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: तुझे जीवन की डोर से बांध
1: दिया।

0: प्रभा जी, आज आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने अपनी अभिनय यात्रा हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो कहीं दूर चलें, चलें वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलके झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। तो चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट लें, बांट लें गम, बांट लें आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट लें आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली तो जगमगा उठी वो तस्वीरें, जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी एक दूसरे का हाथ थामकर, दिखाई दी वो तस्वीरें जब यूं ही सड़कों पर बेमकसद चले थे बहुत दूर तक, बहुत देर तक, याद आए वो पल जब यूं ही बैठे थे चुपचाप एक दूसरे के साथ, आज भी दर्ज हैं फुर्सत के वो लम्हे मन की डायरी में।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोल उठा था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी है एक एहसास जैसे वो कहीं आसपास है। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

वैसा होता नहीं जैसा हम चाहते हैं, फिर भी हमारी चाहत होती है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता कि हम न लिखते अपने दिल में किसी और का नाम, काश ऐसा होता कि हम जानते हुए भी बन जाते अजनबी उनके साथ, काश ऐसा होता कि उनके मन की इबारत पढ़कर भी बने रहते अनजान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। आज के इस सफर में आपके साथ है आपके साथी पूजा नरानिया। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको पहला गीत फिल्म दोस्ताना से। शान की आवाज में विशाल डडनानी का लिखा, विशाल शेखर का संगीत पद किया गीत।

शान की आवाज में। दोस्ताना फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में मजू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इम्तिहान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में सुन रहे थे आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर मर्जू सुल्तानपुरी के बोलों से सजा गीत।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
6: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली

0: 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अगला गीत क्रिश फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में, नासिर फराज का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत।

कृष फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में ये गीत आप सुन रहे थे। अनुराग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, एस जी परमन ने इसकी धुन बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में सुनिए मोहरा फिल्म से इंदिवर का लिखा गीत। संगीत बनाया है विजू शाह ने।

0: थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कशगम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना होगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीकी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने

0: देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत और वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा प्रणालियों की खरीद को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद 3rd स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
2: आकाशवाणी नागपूर, धैर्यशील मेश्राम आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना ऐच्छिक करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय। प्रसारभारतीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेंपत्ती यांची केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती। औद्योगिक क्षेत्रातील कर वसुली MIDC देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचं उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचं प्रतिपादन। आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रंजनाताई मामरडे यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन। आता सविस्तर बातम्या। एनपीसी अर्थात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना ऐच्छिक करण्याचा राज्य सरकारनं निर्णय घेतला आहे। अर्थ विभागाने आज या संदर्भात परिपत्रक जारी केलं। येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पर्याय निवडता येईल। राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत येणाऱ्या राज्याच्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारता येईल। हा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांची किमान 20 वर्ष सेवा झाली असेल तर त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50% निवृत्ती वेतन मिळेल। त्यापेक्षा कमी सेवा झालेल्यांना सेवेच्या प्रमाणात निवृत्ती वेतन मिळेल। ही रक्कम किमान 7,500 रुपये असेल असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे। पण 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा दिलेल्या कर्मचारी या योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतनाला पात्र ठरणार नाही। हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना 60% रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळेल आणि त्यावर महागाई भत्ताही दिला जाईल। सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमधून यापूर्वी काढलेल्या रकमेचा भरणा 10% व्याजासह करावा लागेल। विविध विद्यापीठे जिल्हा परिषद शासकीय आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधल्या कर्मचाऱ्यांनाही हे नियम लागू होतील। प्रसारभारतीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी शेखर वेंपत्ती यांची CBFC अर्थात केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे। याबाबतची अधिसूचना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज जारी केली। वेंपत्ती पदभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून पुढील 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी या पदावर कार्यरत राहतील। वेंपत्ती यांना माध्यम प्रसारण आणि जनसंपर्क क्षेत्रातील व्यापक अनुभव आहे। त्यांच्या नियुक्तीमुळे CBFC कार्यपद्धतीला अधिक बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे। राज्यातील महापालिका क्षेत्रात असलेल्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते पाणी पथदीप या पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी वाढल्या असल्याने आगामी

0: ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में भाग मिल्खा भाग इस फिल्म से। प्रसून जोशी के शब्द थे, संगीत शंकर एहसान लॉय का। और लीजिए अब सुनिए भारतीय सेना गीत। गायक कलाकार गीतकार और संगीतकार कैलाश खैर हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: की सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना गीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए सुनिए अब अगला गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हीरोज फिल्म से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में जालिस शेरवानी के बोल हैं, धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम जयमाला आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत मेरे महबूब फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द शकील बदायूनी के हैं, संगीतकार हैं नौशाद।
3: मेरे महबूब तुझे

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
2: देव दर्शन धूप।
3: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरे महबूब फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के शब्द थे, तर्ज बनाई थी नौशाद ने। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में छोटी सी मुलाकात फिल्म से ये गीत।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। हस्तर जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का। अब साथियों, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम में एक अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौटते हैं।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। साथियों, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम जयमाला। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के स्वरों में। समीर की रचना है, तर्ज बनाई है उत्तम सिंह ने। फिल्म का नाम फर्ज

लता मंगेशकर की आवाज में ये अगला गीत सुनिए महबूबा फिल्म से। इस गीत की रचना की है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है राहुल देव परमन ने।

महबूबा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे गीत। आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत।

मेरे हुजूर फिल्म से अभी ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। और इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम जयमाला यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए साथियों, जय हिंद।

जिद्दी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। राग मिश्र पीलू पर आधारित ये गीत था। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं राग नंद पर आधारित गीत। काजल फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की है। सहे लुधियानवी के बोल। संगीत दिया है रवि ने।

ये गीत फिल्म काजल से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और ये गीत बना कार्यक्रम राग अनुराग का आखिरी गीत। इसी के साथ कार्यक्रम राग अनुराग यहीं संपन्न हुआ।

आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आराम बड़ी चीज है। लेखिका शांति मेहरोत्रा, निर्देशिका रूपम नारायण पांडे।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: नहीं रहते हैं
2: जी आपके मकान के आसपास भी नहीं
1: जी. नहीं और कुछ जाने कहां कहां से चले आते हैं पूछताछ करने.
3: नीता, बहुत दिनों से एक बात महसूस कर रहा हूँ.
1: कौन सी बात?
3: यही कि तुम्हारी जैसी पत्नी बड़े भागी से मिलती है.
1: सौरभ जी, अकारण तो आप मेरी तारीफ करने से रहे, इसलिए भूमिका के बाद कौन सा काम करवाना है ये भी साथ ही साथ बता ही दीजिए.
3: वाह, इसे कहते हैं आपसी समझ. बात मैं बाद में कहता हूँ, समझ तुम पहले ही जाती हो. अब जरा गौरव के हाथ एक प्याला गरम गरम चाय तो भिजवा दो फौरन.
1: और गौरव घर में ना हो तो?
3: अरे इतनी सुबह वो कहाँ चला गया?
1: अरे तुमसे पूछ कर ही तो स्कूल पिकनिक पे गया है ना.
3: अरे हाँ, ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था भाई. तब तो ये नेक काम अब तुम्ही को करना पड़ेगा.
1: सो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आज तुम्हें दफ्तर जाने के लिए देर नहीं हो रही क्या?
3: दफ्तर? आज दफ्तर जा ही कौन रहा है?
1: क्यों, आज काहे की छुट्टी है? हमारा कॉलेज तो खुला है.
3: तुम्हारा कॉलेज खुला है तो तुम जाओ. माँ बदौलत ने तो एक दिन की छुट्टी ले ली है. पलंग पर पांव पसार कर दिन भर आराम फरमाएंगे. किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए.
1: तुम किस्मत वाले हो सौरभ. ओफो, कॉलेज जाने के लिए निकलने की नौबत ही नहीं आ पाती. लगता है आज मुझे भी छुट्टी ही लेनी पड़ जाएगी. आइए आइए अंकल, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए. ठीक तो है?
4: ठीक हूँ बेटी, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है. कॉलेज जाने की तैयारी है?
1: जी हाँ जी हाँ, आज देर हो गई है, अब बस निकल ही रही हूँ.
4: सौरभ दफ्तर चले गए क्या?
1: जी नहीं, वो तो अभी सो रहे हैं.
4: अरे अभी तक सो रहे हैं? क्या बात है, तबीयत खराब है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, बस यूं ही आज छुट्टी ली है.
4: जब वो सो रहे हैं तो जरा अखबार उठा दो, पढ़कर भिजवा दूंगा.
1: जी जी जरूर जरूर, ये लीजिए.
4: पड़ोसी हो तो ऐसा, सारा मोहल्ला तारीफ करता है. अच्छा चलता हूँ, तुम अपना काम करो.
1: इन्हें हमेशा उसी समय आना रहता है जब मुझे देर हो रही हो. सौरभ सौरभ, मैं जा रही हूँ. खाना बनाकर रखा है, गरम करके खा लेना. अरे ओफो, उठकर दरवाजा तो बंद कर लो.
3: ओहो, कितनी चैन की नींद सो रहा था, तुमने नहा जगा दिया.
1: अरे अब दिन भर चैन की नींद सोना और करना ही क्या है.
3: अच्छा टाटा.
5: सौरभ भैया, ओ सौरभ भैया.

0: आ जाने किस मनहूस का मुंह देखकर उठा था।
1: अरे आप हैं सेठी साहब, सुबह सुबह कैसे कष्ट किया?
2: तुम्हारा ही कान था भैया, इसमें भला कैसा कष्ट। 3-4 दिन पहले तुम्हारा बिजली का बिल हमारे लेटर बॉक्स में पड़ा मिला था। उस समय तुम घर पर मिले ही नहीं, इसलिए मैंने उसे संभाल कर मेज की दराज में रख दिया और भूल गया। आज अचानक नजर पड़ी तो सोचा फौरन तुम्हें पकड़ा दूं। आज आखिरी दिन है, पेमेंट आज न किया तो रिबेट नहीं मिल पाएगा।
1: ओह, तब तो जल्दी जाकर रुपया जमा करना होगा, आज तो बहुत भीड़ होगी भाई।
2: सौरभ भाई, हमारा बिजली का बिल पता नहीं क्यों अब तक नहीं आया। ए भैया, तुम तो बिजली घर तक जा ही रहे हो, जरा मेरा भी डुप्लीकेट बिल बनवा कर जमा करते आना। भाई ये लो पिछले बिल की रसीद, जितना लगेगा अभी शाम को ले लेना, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी?
1: अरे नहीं नहीं सेठी साहब, मुझे तो वहां तक जाना ही है, दिक्कत का है?
2: खूब मस्त रहो भैया, और इसी तरह पड़ोसियों की सेवा करते रहो, बड़ा सवाब मिलता है सेवा करने से।
1: क्यों नहीं, क्यों नहीं।
2: अच्छा अब चलता हूं।
1: अच्छा जरूर। ये सेठी भी कम नहीं है, जिस दिन बिल मिल गया था उसी दिन अगर मुझे पकड़ा देता तो कम से कम इस भागदौड़ से तो बच जाता। मैं अपने बिल का भुगतान दफ्तर से किसी दिन जाकर कराया होता, लेकिन इतने दिन तक जानबूझकर लिए बैठा रहा ताकि इसका भी बिल आ जाए तो दोनों एक साथ मुझे पकड़ा कर छुट्टी पा जाए। अब 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे इस काम में, घंटा भर तो डुप्लीकेट बिल बनवाने में ही लग जाएगा। सारा दिन बर्बाद करके रख दिया, अब क्या नहाना और क्या कपड़े धोना, सुबह से अखबार तक पढ़ने की नौबत न आई। चलो जरा हेडलाइन पर तो नजर डाल ही लिए। अरे यहां तो अखबार ही गायब है, पता नहीं कहां उठा कर रख दिया है। इस घर में तो कभी कोई चीज अपनी जगह पर मिलती ही नहीं। ओफो, अब कौन आ मरा?
3: सौरभ।
1: अच्छा आइए आइए आइए अंकल, बैठिए।
3: अरे बेटा अभी बैठूंगा नहीं, जरा बाजार जाना है, ये अपना अखबार रख लो। दूसरे से कोई चीज लेता हूँ जब तक वापस नहीं कर देता तब तक चैन नहीं।
1: हाँ, वो तो है वो तो है।
3: तो फिर आना किसी दिन, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ शतरंज की बाजी नहीं।
1: अच्छा अच्छा जरूर आऊंगा जरूर आऊंगा।
3: अच्छा अब चलता हूँ भैया।
4: भैया जी एक मिनट, भाभी जी कह गए थे कि आपको कपड़े प्रेस करवाने हैं, निकाल दीजिए तो कर दे।
1: नहीं नहीं आज नहीं श्यामलाल, इतवार को कर देना, अभी कपड़े सूखे नहीं है।
4: जी अच्छा, वही शाम को 4-5 बजे तक आ जाना।
1: हाँ हाँ हाँ ठीक है आ जाना, अब पहले जाकर बिजली का बिल जमा करूँ वरना देर हो जाएगी। बाप रे, इतनी भाग दौड़ न की होती तो आज रिबेट से हाथ धोना ही पड़ता। पता नहीं सारे शहर के लोग बिल चुकाने के लिए आखिरी दिन का ही इंतजार क्यों करते रहते हैं, और इस कमबख्त सेठी का बिल बनवाने के चक्कर में तो और भी देर हो गई। हमेशा की तरह पहले बाबू सीट पर नहीं मिला, फिर उसके बाद साहब साइट पर चले गए, और जब वो लौटे तो कहीं कई चक्कर काटने के बाद बिल बन पाया, और वो भी 7,000 रुपये का। अब भला मैं ही कहां से देता? ये बिल मैं सेठी के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने और बिजली विभाग जाने। अब जल्दी से चलकर नहा लिया जाए, बाहर बड़े जोर की भूख लगी हुई है। ठंडे ठंडे पानी से, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए ना आए, गाना चाहिए। अरे अरे अरे आज तो लोगों ने नहाना खाना भी दूभर कर दिया है। अरे आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, अरे कपड़े पहनने का तो टाइम दो कि ऐसा ही चलाऊं। अरे नवीन, तू ये इस वक्त यहाँ कैसे, क्या तूने भी छुट्टी ले रखी है?
5: जी नहीं, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करता, अब मैं तो दफ्तर से ही आ रहा हूँ। बॉस से कह दिया कि पिताजी अपने इलाज के लिए मेरे पास आ रहे हैं और उन्हें रिसीव करने स्टेशन जाना है, और बस पिताजी की सेवा में हाजिर हूँ।
1: यहाँ पधार कर बड़ी कृपा की, बस मैं कृतार्थ हुआ। अब ये और बता दीजिए कि पहले मैं भोजन कर लूं

0: तब आपके लिए चाय बनाऊं या पहले चाय बना दूं तब भोजन करूं?
1: अरे तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया क्या? खा लो खा लो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। तुम तो जानते ही हो यार कि अपना लंच आवर तो 10 से 5 तक चलता है।
0: तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे।
1: जी हरगिज नहीं, हरगिज नहीं।
0: अच्छा थोड़ा सा रोटी दाल चलेगा?
1: अब ये ठंडी दाल रोटी तो खाओगे तुम, और हम तो तुम्हारे लाए हुए गरम गरम समोसे और इमरती से ही काम चला लेंगे भाई।
0: वाह वाह वाह वाह, इस सादगी के क्या कहने जनाब। हेलो, जी हाँ, सौरभ कुमार बोल रहा हूँ। किस स्कूल से? विद्या निकेतन से। हाँ हाँ जी हाँ, गौरव मेरा ही बेटा है। क्या क्या हुआ बस को? अरे बच्चों को छोड़ तो नहीं आई? शुक्र है भगवान का, मैं तो घबरा ही गया था। कहां पर बस खराब हो गई? तब तो बहुत देर से लौट पाएंगे। अच्छा अच्छा, बच्चों को लाने के लिए दूसरी बस भेजकर आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है ठीक है, मैं स्कूल आकर गौरव को ले जाऊंगा। कब तक आएंगे बच्चे? अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच रहा हूं। लो ये एक नई मुसीबत आ गई।
2: क्या हो गया?
0: गौरव की स्कूल बस उसे घर तक पहुंचाने वाली थी, लेकिन वो रास्ते में ही बिगड़ गई। अब मुझे ही उसे लेने के लिए स्कूल भी जाना पड़ेगा।
1: अरे अच्छा ठीक है ठीक है, तो मेरी चाय ड्यू रही, अब चलता हूँ।
0: अरे रुको 5 मिनट यार, मैं भी चलता हूँ ना। तैयार हो जाओ, फिर रास्ते में तुम्हें घर पर ड्रॉप करता हुआ निकल जाऊंगा।
1: नहीं नहीं सौरभ, मैं भी स्कूटर से ही आया हूँ ना।
0: अच्छा तो फिर ठीक है, कल दफ्तर में मिलते हैं।
1: हाँ,
0: बाय।
1: ओके बाय।
0: अरे तुम तो आज बड़ी जल्दी आ गई नीता, क्या वजह है?
3: अरे मेरी जल्दी आने का भ्रम आपको क्यों हो रहा है ये तो आप ही जाने, लेकिन घड़ी के हिसाब से 5:00 बज रहे हैं। अच्छा ये बताओ, किसी की चिट्ठी तो नहीं आई?
0: पता नहीं यार, सारा दिन इतने मिलने वाले आते रहे कि लेटर बॉक्स खोलने का होश ही नहीं रहा। व्हाट ए वंडरफुल डे, वाह आनंद आ गया।
3: आज मेरी नहीं है क्या? ये दरवाजा खटखटाकर लौट गई।
0: भगवान जाने।
3: अरे तुम तो घर में ही थे ना, तुम्हें नहीं पता चला?
0: जी नहीं, आधे समय तो हम घर में आराम करते रहे, फिर आधा समय सैर सपाटे में निकल गया। ये देखो इस समय भी कहीं जाने के लिए ही कपड़े बदले हुए हैं।
3: कहाँ जाने के लिए?
0: वही व्यथा कथा तो सुना रहा हूँ नीता जी। हुआ ये कि आपके कॉलेज के लिए प्रस्थान करते ही पहले अंकल अखबार लौटाने आ गए।
3: अच्छा?
0: फिर वो सेठी का बच्चा, कई दिन से सहेज कर रखा हमारा बिजली का बिल, रिबेट मिलने के आखिरी दिन पकड़ा गया। और ये भी फरमा गया कि उसका भी डुप्लीकेट बिल बनवाकर भुगतान करता हूँ।
3: अच्छा।
0: और उसके जाते ही श्यामलाल कपड़े प्रेस करने के लिए आदम का, अब उसे वापस किया तब तक मेरे स्नेह से खींचे नवीन मियां दफ्तर से गोल कोकर यहाँ चले आए। अरे क्लाइमेक्स तो तब हुआ जब गौरव के स्कूल से फोन आया कि बच्चों को पिकनिक पर ले जा रही बस रास्ते में बिगड़ गई।
3: हे भगवान, गौरव को कहीं चोट तो नहीं है?
0: जी नहीं, चोट तो बस को आई है, इसीलिए स्कूल वालों ने कहा है कि अब बच्चों के माता पिता खुद स्कूल आकर अपने बच्चों को ले जाएं। और इस शुभ कार्य के लिए निकल ही रहा था कि बस आप प्रकट हो गईं।
3: वाह वाह वाह, ऐसी नायाब छुट्टी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किसी शायर ने वो क्या खूब कहा था?
0: अरे खा कहा था, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए।
4: आराम बड़ी चीज है। अभी आपने ये नाटिका सुनी, लेखिका थी शांति मेहरोत्रा, निर्देशिका रूपम नारायण पांडे। ये नाटिका आकाशवाणी इलाहाबाद की प्रस्तुति थी।

0: ये था गीत थैंक गॉड फिल्म से योहानी जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में। अगला गीत सुनवाने से पहले सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, मिशन मजनू। इस फिल्म से सुनिए राज बर्मन का गाया गीत। रोहित शर्मा ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सर्कस फिल्म से ये गीत। पपॉन और श्रेया घोषाल की आवाजों में कुमार का लिखा गीत, देवी श्री प्रसाद का संगीत।

एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 8:45 में आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: बस अब थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ

0: मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नवगठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण

0: सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
1: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमरीका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमरीका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: यहीं पर।
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

ये गीत आपने अभी सुना, लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ठोकर फिल्म से ये गीत।

0: कार्यक्रम आपके लिए की पहली प्रस्तुति हमने आपको सुनवाई थी फिल्म अजनबी से किशोर कुमार की आवाज में, और इसके बाद ये गीत आपने सुना फिल्म ठोकर से मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के

0: द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, रफू चक्कर इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। गीतकार गुलशन बावरा है, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजें।

शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में रफू चक्कर फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत पाप और पुण्य फिल्म से मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की अगली प्रस्तुति। ये अगला गीत कोरा कागज फिल्म से हमने लिया है। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। एमजी हशमत रचनाकार हैं और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए, और इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, गुलशन बावरा के शब्द, तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

हाथ की सफाई। इस फिल्म से अभी आप गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गुलशन बावरा के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न हुआ। आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो साथी पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती।

1 मई 1988 को ये स्टार पैदा हुई थी बेंगलोर में। अनुष्का की पैदाइश बेंगलोर की है, लेकिन उनके माता पिता का ताल्लुक गढ़वाल उत्तराखंड से है। उनके पिता आर्मी ऑफिसर हैं और पोस्टिंग की वजह से उन्हें कई स्थानों पर रहना होता है, इसलिए अनुष्का की स्कूली पढ़ाई आर्मी स्कूल में पूरी हुई और आर्ट्स में विशिष्ट विषय के साथ उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ बेंगलोर में। मुंबई तो अनुष्का पहुंची पढ़ाई पूरी करने के बाद, जहां उन्हें निर्माता आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में साइन किया और वो फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ।

रब ने बना दी जोड़ी अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म है। और ये भी आपको बताएं दोस्तों कि आदित्य चोपड़ा ने सन 2008 में यशराज फिल्म्स के बैनर के अंतर्गत अनुष्का को 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ अनुबंधित किया था और ये वादा उन्होंने निभाया भी। दोस्तों अनुष्का दरअसल फिल्मों में आने की क्रेजी बिल्कुल नहीं थी, वो एक सुपर मॉडल बनना चाहती थी और इसी सिलसिले में फिल्मों में प्रवेश से पहले अनुष्का रैंप पर उतरी एक बड़ी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए सन 2007 में। उनका मॉडलिंग का ये सिलसिला जारी रहा लेकिन रब ने तो जैसे उनकी जोड़ी खास तौर से फिल्मों के साथ ही बनाई थी सो अनुष्का बन गई

ये गाना फिल्म बदमाश कंपनी का था, बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों आपने। सन 2008 में निर्माता आदित्य चोपड़ा ने जो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके तहत अनुष्का की ये दूसरी रिलीज थी। बदमाश कंपनी में अनुष्का के हीरो थे शाहिद कपूर और ये साल था सन 2010। सिलसिला आगे बढ़ा, सुनहरे पर्दे पर अनुष्का की चमक भी रफ्ता रफ्ता सुनहरी होती जा रही थी। लोगों ने उनके काम को गंभीरता से लिया और फिल्म क्रिटिक ने भी उनके संजीदा और सटीक अभिनय की तारीफों के पुल बांध दिए। रब ने बना दी जोड़ी के लिए सन 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकित भी किया गया।

सन 2010 में ही आई फिल्म बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का के नायक बने उस समय के नवोदित अभिनेता रणवीर सिंह। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ अनुष्का शर्मा का 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था। फिल्म

बैंड बाजा बारात फिल्म के लिए सन 2011 में अनुष्का शर्मा को नामांकित किया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए और स्टार स्क्रीन अवार्ड के तहत एक बार फिर से बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। पुरस्कार भले ही उन्हें ना मिला हो दोस्तों, लेकिन प्रशंसकों का प्रतिसाद बेहद मिला और चल पड़ी फिल्म बैंड बाजा बारात बड़ी धूमधाम के साथ।

पटियाला हाउस के सभी मेंबर्स को लोगों ने पसंद किया और अनुष्का ने एक और कदम आगे बढ़ाया रणवीर सिंह के साथ। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेडीज वर्सेस रिकी बहल।

जहां तक अवार्ड्स की बात है तो वैसे अनुष्का के लिए सबसे पहले काम ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताना चाहेंगे जब तक है जान फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड अनुष्का को मिल चुका है।

तो ये गाना आपने सुन लिया। और ये भी याद दिला दें आपको कि 2013 में रिलीज मटरू की बिजली का मंडोला फिल्म में भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं अनुष्का शर्मा ने।

0: सन 2014 में रिलीज पीके फिल्म में भी अनुष्का शर्मा ने बेहतरीन काम किया और मुख्य जो इसके नायक हैं वो तो हैं आमिर खान।
1: तुझे तक

सन 2015 में अनुष्का शर्मा ने 10H10 फिल्म में काम किया, जो आप जानते हैं कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है और इसको प्रोड्यूस भी अनुष्का शर्मा ने ही किया।

0: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था प्रोड्यूसर और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जिंदगी में रूमानियत बहुत जरूरी है। इंसान वही रूमानी हो सकता है जिसमें एहसास का मादा हो, जिसमें जज्बात हो। फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। देखिए ना, मैं भी यही सोचती हूँ। तुम मेरे जीवन का वही कोना हो जहां मैं जिंदगी को खुलकर रूमानियत के साथ जीना चाहती हूँ। डर कर नहीं, मर कर नहीं।

दिल चाहता है चांदनी रात हो और महबूब का साथ हो, महकती हवा और चांद तारों की छांव हो। तुम मेरे साथ हो ना तो मन मयूर कह उठ रहा है, ये रात कभी खत्म न हो। हाँ, ये रात कभी खत्म न हो।

शर्तों का कोई काम नहीं है ना। हमारी सादगी में बसी है रूहानी मोहब्बत। दिखावे की दुनिया से दूर हम सादगी का लिबास ओढ़े बैठे हैं। देखो ना।

दिन की भागदौड़ और बेचैनियों को अगर रात का आसरा न हो तो जिंदगी ख्वाब देखने को भी तरस जाती है। ख्वाब के प्याले से होकर नींद जब आंखों में पिघलती है, बिखरी हुई रात आसमां से यूं आहिस्ता आहिस्ता उतरती है। मैं आंखें बंद करती हूं, लगता है मैं किसी खूबसूरत सपने में जी रही हूं। ओह, ये रात बहुत हसीन है, तुम्हारे पास होने से ये सपनों की रात बन गई है जैसे।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मोहब्बत की किताब का यही फायदा है कि इसके अक्षर पढ़ने के लिए उजाले का होना नितांत गैर जरूरी है। देखो ना, तुम्हारा स्पर्श मुझे ऐसी जकड़ लेता है जैसे उदासी भरी दीवारों पर चढ़ती हूँ लताएं। जब मन में प्यार पनपता है तो बाहर का मौसम भी हसीन लगता है। हवाएं प्यार का संगीत घोल रही होती हैं और बादल बूंदों के रूप में अपना प्रेम बरसाने लगता है। और प्यार में तो शाख से गिरे सूखे पत्तों से भी आती है मरमरी धुनें। हाँ, मरमरी धुनें।

अपना प्रेम बरसाने लगता है। और प्यार में तो शाख से गिरे सूखे पत्तों से भी आती है मरमरी धुने। हाँ, मरमरी धुने।

कभी कभी आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस आते हैं तो आपको सोने नहीं देते, लेकिन प्यार में डूबी मेरी अंखियां सिर्फ तुम्हें तलाशती हैं। सारा दिन बेचैन रहती हैं, तुम्हारे कदमों की आहट की तलाश रहती है इन्हें। चांदनी रात में खुशबूदार फूलों का मेरे जूड़े पर गजरा सजाना, आह, आज भी रूह में महकता है तुम्हारा वो अंदाज़े मोहब्बत निभाना।

रात की खामोशी में जब तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है जैसे खुदा ने मुझे अनमोल पल उपहार में दिए हैं। सिर्फ तुम्हारी इबादत के ख्वाब के साथ तुम्हारे आगोश में हूँ अंतिम पड़ाव जीवन का। ओह, कितनी रूहानी है ये प्रेम की अनुभूति।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान

0: मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
1: President Folan conveyed Vietnam's support on the issue of
2: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और $अरबों के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनते हैं हिंदी गीतों का कार्यक्रम बेला के फूल। कार्यक्रम का आगाज करते हैं रजनीगंधा इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत है योगेश का और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत कल्याण जी आनंद जी, फिल्म है इशारा और आवाज है मोहम्मद रफी इनकी।

बेला के फूल। इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं राम राज्य, इस फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। भरत व्यास इनकी रचना है और संगीत है वसंत देसाई इनका।

किशोर कुमार इनकी आवाज में, वर्मा मलिक का लिखा गीत अभी आपने सुना, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म थी हम तुम और वो।

लता मंगेशकर इनकी आवाज में जेलर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत था राजेंद्र कृष्णन इनका और संगीत था मदन मोहन इनका।